नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए, हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद

0: અંજલિ બોન, ગીત તો આઈશો પૂરું નાણા ગીત ને બાદ એક વખત ફેરી ફર આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં નિઝિમ કી ગીત કે પહેલે આપે વિશે બતાડ્યું તું કે આજે આપણે વાતે કરવા વાળા હા કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં કે ખેતી મેં આપણે નવાચાર હરતે કરી શકા
1: હોવે તો જાગૃતિ બોન અણા વિષય માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં પધાર્યા તો કહે શ્રીમાન સોહનનાથ જોગી સર. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે
0: હોવે.
1: સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર
1: સર, આપકો બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
2: ધન્યવાદ
1: સર. જૈસા કે આપ જબ ભી હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડતે હૈ તો હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો ખેતી સે જુડી ઢેર સારી બાતો સે અવગત કરવાતે હૈ. તો સર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે ખેતી મેં હમ નવાચાર કો કૈસે અપના સકતે હૈ.
2: બિલકુલ, બહોત હી અચ્છા વિષય હૈ કે ખેતી મેં હમ ક્યા નવાચાર કર સકતે હૈ યા કૈસે કર સકતે હૈ या कौन कौन से नवाचार हम कर सकते हैं. तो सर्वप्रथम तो हमको जो है हमारा खेत देखने होंगे कि हमारी खेती अभी वर्तमान में क्या खेती है. उसमें हम सर्वप्रथम जो है हम क्या क्या फसलें बो रहे हैं.
1: जी जी.
2: हमारा फसलों का जो अवशेष बचता है फसल अनाज के बाद में या दालों के बाद में या जो भी उत्पादन है
1: जी जी.
2: उसके बाद में हमारे पास जो भी अवशेष बचता है उसका हम क्या करते हैं
1: जी जी.
2: और इसके साथ ही जो भी हमारा उत्पादन है उसका हम प्रबंधन कैसे करते हैं उसको लेके हमको एक आकलन मोटा मोटा सा करना है
1: जी जी.
2: कि हम जो जो फसलें करते हैं वो फसलों से हमको क्या क्या उत्पादन मिल रहा है और क्या क्या उपयोग हो रहा है. तो नंबर एक तो हमें जो नवाचार की दिशा में सोचना है कि ऐसा कोई भी फसल है कि जो हमको जरूरत है और वो उसमें नहीं हो रही है तो हमको सर्वप्रथम उसको उगाने की कोशिश करनी चाहिए. दूसरी बात है कि क्योंकि खेतीबाड़ी बहुत बड़ा विषय है
1: जी जी.
2: और खेत के बिना खेती हो नहीं सकती और किसानी की जो जानकारी है
1: जी बिल्कुल
2: वो हमको समय समय पे जो है अपडेट हमको करनी चाहिए
1: जी बिल्कुल.
2: क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे इस तरह के जो नवाचार होते हैं हम उनको देख के सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नया किया और किस प्रकार से उन्होंने खेत को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी खेती किसानी को नुकसान पहुंचाए बिना जो नवाचार सक्सेस होते हैं वही वास्तविकता में नवाचार है. और हमारी जो जरूरतों को हम जो खेती करते हैं उसमें ये देखें कि हमारे खुद के लिए खेती, हमारे गांव के लिए खेती, हमारे आसपास के लोगों के लिए खेती
1: जी जी.
2: और फिर हम बाजार की तरफ जाए. नहीं कि नवाचार में बहुत सारा ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हम नवाचार करें. नवाचार में क्या है कि जो कॉमर्शियल फसलें हैं वो ले आते हैं और कॉमर्शियल फसलें जो वो उगाता है न वो खुद खाता है न उसका गाँव वाले उसका उपयोग करते हैं न उसके आसपास के तहसील स्तर के लोग भी उसका उपयोग नहीं कर पाते
1: जी. बिल्कुल सर.
2: एक उदाहरण ले ले हम जैसे

0: जागृति बुन गीत तो आयशु पुरु ने अनस गीत हाथे कार्यक्रम खेती वाड़ी तकी पड़ा सूटा
1: हो गए।
0: आशा कर रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में जी भी बातें रही हैं ये आपड़े किसान भाई बुनों ने गमी होंगे। तो किसान भाई बुन आपने अमरो आज नुआ कार्यक्रम के ऊ लगियो इन्हें बारा में आप राय सुझाव अमने आली शको अमरे अणा पता माते।
1: तो किसान भाई बुन अमारो पतु लकी लो, अमारो पतु है कार्यक्रम खेती वाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपनो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी पल्ले आप अमने फोन करी शको आपड़े अणा नंबर माते। आपनो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो किसान भाई बुनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक नया विषय ने हाथी तारुदी।
1: राम राम
0: राम राम।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है और आज का दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि बच्चों के जीवन को सही दिशा देने का काम भी करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षक हमारे जीवन में उस दीप की तरह होते हैं जो ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और स्वस्थ जीवन की राह भी दिखाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन इस भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है, स्वस्थ शरीर, संतुलित आहार और अच्छी जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे स्कूल में अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं। ऐसे में स्कूल और शिक्षक बच्चों को पौष्टिक भोजन चुनने, पर्याप्त पानी पीने, फल सब्जियां खाने और जंक फूड से दूरी बनाने की आदत डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर आज हम बात करेंगे स्कूल में पोषण शिक्षा और बच्चे के स्वस्थ भविष्य में शिक्षक की भूमिका पर। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम में। कहना चाहेंगे कि वास्तव में एक शिक्षक बच्चे की जिंदगी में केवल पढ़ाई का मार्गदर्शन नहीं होता बल्कि उसकी आदतों और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इसी विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिड़ियावासा से प्राचार्य विजय कृष्ण वैष्णव जी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।
0: बिल्कुल, जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह मनाते हैं और आज हम देख रहे हैं कि 5 सितंबर का दिन है और आज ही के दिन हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो सबसे पहले तो वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से सर आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि शिक्षा के साथ पोषण किस तरीके से जरूरी है। तो इस विषय पर बातें तो हम ढेर सारी करेंगे लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके परिचय से रूबरू होना चाहूंगी।
1: मैं विजय कृष्ण वैष्णव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिड़ियावासा में कार्यरत हूँ एवं पिछले 9 वर्ष से प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और अब तक मेरी कुल 33 वर्ष की सेवाएं हो चुकी है। विद्यालय में पोषण शिक्षा क्यों जरूरी है, जैसा कि आपका ये पहला प्रश्न है।
0: बिल्कुल,
1: पोषण शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक क्षमता, एकाग्रता और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सीधा संबंध उनके खान पान से है।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चों को बचपन से संतुलित आहार की जानकारी दी जाए तो वे स्वस्थ भोजन चुनने की जो आदत है उसको विकसित कर सकते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सर,
1: जैसा विद्यालय में पोषण शिक्षा जरूरी।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो यही हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो पोषण से जुड़ी चीजों को नहीं खाते हैं। हम देखते हैं कि घर के खाने को लेकर अक्सर बच्चे जो है आनाकानी कर देते हैं और वो जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
1: बच्चे जंक फूड की तरफ इसलिए आकर्षित है मैडम क्योंकि जंक फूड का स्वाद अलग होता है, थोड़ा आकर्षक उसकी पैकेजिंग होती है, विज्ञापन और आसानी से उपलब्ध होना बच्चों को आकर्षित करता है। आजकल के जो विज्ञापन है, आजकल के जो बच्चे आपको रोटी सब्जी दाल खिलाओ, चावल खिलाओगे तो नहीं खाएंगे, वे जैसे चिप्स है, नूडल्स है, बर्गर है, पिज्जा है और मीठे पेय जो पदार्थ है वो बच्चों को स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए बच्चा जो है उस जंक फूड की ओर आकर्षित होता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है जो कि इस अपने को नजर आता है कि जो आकर्षक पैकेजिंग वगैरह जो है ना उससे बच्चा उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि विज्ञापन और आकर्षक जो पैकेजिंग होती है उसकी वजह से बच्चे जो है वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या शिक्षा बदलाव ला सकती है?
1: बिल्कुल, शिक्षक जो है वो इसमें बदलाव लाने का जो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक स्वयं पहले स्वस्थ खान पान का उदाहरण बन सकते हैं और बच्चों को संतुलित आहार के क्या फायदे हैं वो बच्चों को नियमित समझाने पड़ेंगे कि एक हम जंक फूड खाते हैं उससे हमें क्या नुकसान है, और एक नियमित रूप से जो है वो शिक्षक छात्रों को समझाएंगे उदाहरण देकर के, तो छात्र जो है वो उसको समझेगा। जैसे कक्षा में पोषण संबंधित गतिविधियां आप करवा सकते हैं, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवा सकते हैं, फल सब्जी दिवस मना सकते हैं तथा स्वस्थ टिफिन की पहल की जा सकती है। जैसे सरकारी विद्यालय में तो बच्चों को MDM का भोजन जो है वो मिलता है, लेकिन निजी विद्यालयों के अंदर जो बच्चे जाते हैं जो टिफिन लेकर के जाते हैं तो उनको भी एक अच्छा सा टिफिन जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी इस प्रकार का अगर भोजन उनको दिया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षक चाहे तो बच्चों को कई उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि शिक्षक किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं इन सारी चीजों में। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल में क्या टिफिन जांच जरूरी है?
1: टिफिन जांच का उद्देश्य कोई दंड देना नहीं है बल्कि स्वस्थ आदत विकसित करना होना चाहिए कि बच्चों के अंदर स्वस्थ आदत का विकास हो।
0: बिल्कुल,
1: समय समय पर सकारात्मक तरीके से टिफिन देखा जाए, यानी कि जैसे बच्चे टिफिन लाते तो अपन उनको जांच करें और बच्चा क्या भोजन उस टिफिन के अंदर लाया है। जैसे बच्चों को पौष्टिक विकल्पों के बारे में अपन समझा सकते हैं, उनके टिफिन को अपन चेक करें, लेकिन अरे ये तू क्या खाना ले आया, ऐसा क्यों

0: किया, ऐसा बोल के बच्चों को अपन शर्मिंदा या अपमानित अपने को नहीं करना चाहिए तथा खाद्य एलर्जी और परिवार की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन दें और अच्छे टिफिन में अच्छा भोजन लाने की, गुणवत्ता युक्त जो भोजन लाने की बात अपन उनको समझा करके कर सकते हैं मैडम।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हमें किस तरीके से बच्चे की टिफिन की जांच को कोई दंड के तोर पर नहीं देखना है। इसे हमें एक ऐसी चीज मानना है जिससे बच्चे भी प्रोत्साहित रहे और वो अगली बार अपने टिफिन में पोषण युक्त चीजों को लेकर पहुंचे। यही सर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल में मिड डे मील चलता है, तो इसका क्या महत्व है?
0: मिड डे मील बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का एक सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम है मैडम। जो सरकारी विद्यालय जो है वहाँ पर छात्रों को लंच में मिड डे मील का भोजन और साप्ताहिक एक मेनू बना रखा है राज्य सरकार ने, उसके अनुसार एक पौष्टिक भोजन जो है वो विद्यालय में उपलब्ध होता है। इसमें इससे जो है बच्चों की पोषण संबंधी जो आवश्यकताओं को ये पूरा करता है मिड डे मील।
1: बिल्कुल,
0: नियमित उपस्थिति बढ़ाने और पढ़ाने में एकाग्रता बनाए रखने में भी इसकी सहायता जो उसको मिलती है। साथ ही बच्चों में समानता और सामूहिक भोजन की भावना विकसित होती है। जैसे एक विद्यालय के अंदर 100-125 बच्चे अगर 1 से 8 के अंदर हैं, तो एक साथ सारे बच्चे जो है वो भोजन करते हैं, हमारा अध्यापक जो है वो प्रतिदिन भोजन को चखता है, छात्रों के साथ में बैठ करके भोजन करता है, तो उसमें मिड डे मील का जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मैडम विशेष करके महत्व है, जहाँ पर गरीब तबके के जो बच्चे रहते हैं और वो मिड डे मील के माध्यम से उनको पौष्टिक भोजन जो है वो विद्यालय में उपलब्ध कराए जाते।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि किस तरीके से मिड डे मील जो है इसका एक अलग ही महत्व है। इससे बच्चे जो हैं वो पोषण की चीजों से जुड़े रहते हैं और साथ ही जो माता पिता हैं जिनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं करा सकते हैं, तो स्कूल के माध्यम से बच्चों को वो चीजें मिलती है, साथ ही बच्चों की उपस्थिति जो है वो इसमें बनी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज स्कूल जाएंगे तो हमें ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा। इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे बच्चों के लिए ही सरकार द्वारा की गई हैं। यही हम देखते हैं सर कि खाने के साथ साथ पानी पीना भी बहुत जरूरी है, तो बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डालें?
0: बच्चों को मैडम नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा शिक्षकों को कि आप जो है वो पानी भी जो है वो बराबर अंतराल में पीते रहें। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में स्वच्छ और आसानी से उपलब्ध पेयजल की व्यवस्था हो। बच्चों के लिए अगर मान लो हैंडपंप लगा हुआ है या मोटर उपलब्ध है, तो पानी जो है वो कैंपर में भर करके या अथवा स्टील की जो टंकियां होती है जिसमें नल लगा हुआ हो, इस प्रकार से छात्रों को पेयजल अगर उपलब्ध कराया जाएगा और बच्चों को बार बार अपन मार्गदर्शन देते रहेंगे कि बेटा आप जिस पीरियड में जब भी है तो अधिक से अधिक पानी जो है वो आप जो है वो पिए, और जब बच्चों को पानी सर्व सुलभ होगा, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय है जहाँ पर आरओ लगा हुआ मैडम, और बहुत अच्छे ऐसे विद्यालय है जहाँ हम कई बार निरीक्षण में भी जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो होती है और शिक्षक बार बार छात्रों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, और शिक्षक स्वयं भी पानी पीने की आदत का उदाहरण बने, वो स्वयं भी पिए। तो मैं ये देखो, मैं भी तुम्हारे सामने ये पानी पी रहा हूँ, आप भी इसको पानी को पियो। पानी का शरीर के लिए क्या ज्यादा महत्व है वो चीज अपन उनको बता सकते हैं, साथ ही बच्चों को पानी की बोतल साथ रखने के लिए भी अपन उनको जो है वो मार्गदर्शन जो है दे सकते हैं। खेल हो या गर्मी का समय हो, उस समय पर्याप्त पानी पीने के लिए अपन जो है उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, मीठे पेय की जगह पानी को प्राथमिकता देने की आदत हमें विकसित करनी चाहिए, क्योंकि वो मीठे पेय जो पदार्थ पीते हैं उसको कम करके उनको अपने बार बार कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो पिए, क्योंकि पानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा
1: जरूरी है। बिल्कुल सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि खेल और पोषण का क्या रिश्ता है?
0: खेल और पोषण एक दूसरे के पूरक हैं। खेल से शरीर सक्रिय और मजबूत बनता है, जबकि पौष्टिक भोजन शरीर को और ऊर्जा आवश्यक पोषक तत्व देता है।
1: बिल्कुल,
0: नियमित खेल के साथ संतुलित आहार बच्चों को शारीरिक क्षमता, एकाग्रता और स्वस्थ विकास में मदद करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों पर ही जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया कि खेल और पोषण का क्या रिश्ता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि माता पिता और शिक्षक साथ में कैसे काम करें ताकि बच्चे जो है उन्हें पर्याप्त पोषण और उनके खाने की आदतों में सुधार आ पाए।
0: माता पिता और शिक्षक जो है वो मिलकर बच्चों की भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान दें, माता पिता भी ध्यान दें, शिक्षक विद्यालय के अंदर भोजन संबंधी बातों पर ध्यान दें, उनकी क्या आदत है उस पर ध्यान दें, स्कूल में पोषण संबंधी बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों में अभिभावकों को शामिल किया जा सकता है मैडम।
1: बिल्कुल
0: हाँ। दूसरा जो है, घर और स्कूल दोनों जगह स्वस्थ भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाता है, वो तो माता पिता और शिक्षक दोनों मिलकर के एक साथ ये काम जो है वो कर सकते हैं और अच्छी आदतों का विकास जो है वो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि माता पिता और शिक्षक साथ मिलकर कार्य करेंगे तब ही जाकर बच्चों में परिवर्तन आएगा। हम देखते हैं कि घर में कुछ भी बात अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हम यही कहते हैं कि जाकर तुम्हारे स्कूल के सर या टीचर को कहेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। यही सर, हम क्या ऐसे प्रयास करें जिससे बच्चे जो हैं उन्हें हरी सब्जियां पसंद आने लगे?
0: जी, आजकल गांव में हम कई बार विजिट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हरी सब्जी को बना देते हैं तो बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं। इसलिए हमारा जो एक सिस्टम है, दाल सब्जी और रोटी बनाना जैसे मेनू के अंदर आता है, तो क्या करते हो, दाल के अंदर ही जैसे पालक डाल दिया, लौकी डाल दी, इस प्रकार से वो तो हम कहते हैं दाल और सब्जी अलग अलग बनाई, मैडम कोई बात नहीं, आप इनको भिंडी की सब्जी खिलाइए, दाल के साथ भिंडी की सब्जी बनाइए, पत्ता गोभी की सब्जी बनाइए, फूल गोभी की सब्जी, टमाटर बनाइए, तो ये जो है वो बच्चों के अंदर इस प्रकार की नहीं खाते, ऐसा नहीं है। बच्चों को अपन खिलाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो धीरे धीरे उसको स्वाद आएगा और वो भोजन जरूर जो है वो अच्छा जो है वो करेगा। बच्चों को फल और सब्जियां खाने के लिए कहने के बजाय अपन ये काम कर सकते हैं, वो रोचक तरीके से उससे परिचित करवाएं।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग रंगों और आकारों के जो फल और सब्जियां के आकर्षक अपन प्लेटे बना सकते हैं। किसी दिन विशेष करके जो फल और सब्जियां हैं उसका कोई स्पेशल डे मना लिया आपने, फ्रूट डे मना लिया, फ्रूट्स ले आए तो कभी सलाद काट लिया, गाजर है, मूली है, प्याज है, इस टाइप से। और आजकल जो विद्यालयों के अंदर किचन गार्डन भी बने हुए हैं और वहां पर भी कई प्रकार की जो है वो सब्जियां विद्यालयों के अंदर जो है वो उगाने का भी जो है वो सरकार ने अभी किचन गार्डन कई विद्यालयों में बना रहे हैं और अभी बनने भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार की अपन गतिविधियां भी कर सकते हैं जिसमें बच्चों की रुचि जो है वो सब्जी के प्रति बढ़े। बच्चों को फल सब्जियां उनको क्या पसंद है उसको भी अपन, उनको क्या चीज आपको अच्छी लगती है तो उनकी रुचि को भी अपन देख सकते हैं और रुचि के अनुसार भी उनको धीरे धीरे अपन फल और सब्जियों की ओर आकर्षित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बच्चों के पोषण को लेकर बात की है कि किस तरीके से शिक्षक और विद्यालय की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है, तो यही आज कार्यक्रम के अंत में और शिक्षक दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोता साथी, हमारे जो विद्यार्थी हैं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश यही है कि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ विद्यालय और स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखता है। इसलिए पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है बल्कि सही भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित खेल और स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बच्चों को यह सिखाएं कि स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी आदत कल के स्वस्थ और सशक्त भारत का जो है वो आधार बनेगी मैडम। यही जो है वो मेरा संदेश है।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है यह अवसर प्रदान किया जिसके ऊपर आपके जो प्रश्न किए उसका उत्तर अच्छे से दे सकूं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से एक बच्चा जब स्कूल में पोषण के बारे में सीखता है, पानी पीने की आदत अपनाता है, खेल कूद में हिस्सा लेता है और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है, तो उसका असर केवल आज के स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि उसके पूरे भविष्य पर पड़ता है। जी हाँ श्रोता साथियों, क्योंकि एक शिक्षक की सच्ची सफलता तब है जब उसकी सीख बच्चे की आदत बन जाए। आज हम एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि बच्चे की थाली में पोषण बढ़ाएंगे, जंक फूड को कम करेंगे, उन्हें पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रेरित करेंगे, खेलने के लिए समय देंगे और घर और स्कूल मिलकर उनके स्वस्थ भविष्य की नींव मजबूत करेंगे। इसी संदेश के साथ आप सभी को एक बार फिर से वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब कार्यक्रम से विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातें रहने वाली है, जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, किताबें सिर्फ अक्षर सिखाती है मगर जीवन हमें जीना सिखाता है, और जीवन के सफर में मिलने वाला हर इंसान, हर परिस्थिति और हर अनुभव हमारा शिक्षक बन जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है। लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी बिल्कुल, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि युवा साथियों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज जो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे विषय जुड़ रहा है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, विषय के बारे में आपको गीत से पहले बता चुके हैं। बात कर रहे हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक जरूरी होता है। जब हम जागृति जी शिक्षक शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले स्कूल की कक्षा, ब्लैक बोर्ड, किताबें और अपने गुरुजी की तस्वीर सामने आ जाती है।
1: जी हाँ,
0: निश्चित रूप से हमारे शिक्षक हमारे जीवन को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं सर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी हमारी सीखने की यात्रा क्यों नहीं रुकती? क्योंकि जागृति जी, जीवन स्वयं एक ऐसी पाठशाला है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय खुलता है।
1: बिल्कुल,
0: हर मोड़ पर एक नया शिक्षक हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमारे जीवन में पहला शिक्षक अक्सर हमारे माता पिता होते हैं। हम बोलना, चलना, दूसरों का सम्मान करना, सही और गलत में अंतर समझना और छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना उन्हीं से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। उनकी मेहनत हमें परिश्रम का अर्थ समझाती है, उनका संघर्ष हमें धैर्य सिखाता है और उनका विश्वास हमें आगे बढ़ने का साहस देता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बाद हमारी जिंदगी में आते हैं स्कूल के शिक्षक। वे हमें केवल विषयों की जानकारी नहीं देते बल्कि समय का महत्व, अनुशासन, मेहनत, असफलता से सीखना और अपने लक्ष्य के प्रति हमें ईमानदार किस तरह से रहना है।
0: जी जी।
1: ये सारी बातें कशिश वो हमें सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कभी शिक्षक की डांट उस समय बुरी लग सकती है लेकिन कई बार वही डांट हमें अपनी गलती पहचानने और बेहतर बनने की दिशा भी देती है। एक अच्छा शिक्षक हमारे अंदर छिपी उस क्षमता को पहचान लेता है दोस्तों, जिसे शायद हम स्वयं भी नहीं पहचान पाते। लेकिन श्रोताओं, जीवन की असली पाठशाला यही खत्म नहीं होती। कभी कभी हमारा मित्र हमारा शिक्षक बन जाता है। कोई दोस्त हमें आत्मविश्वास सिखाता है, कोई हमारी गलती पर आईना दिखाता है और कोई मुश्किल समय में साथ खड़े होकर हमें रिश्तों की कीमत समझाता है। वहीं कभी किसी दोस्त की गलती देखकर भी हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कौन सा रास्ता नहीं चुनना चाहिए।
0: बिल्कुल साथी जागृति जी, हम अक्सर सफलता को अपनी मंजिल और असफलता को अपनी हार समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी असफलता को सही नजर से देखेंगे तो वह हमें हमारी कमियां बताती है। परीक्षा में कम अंक आए, नौकरी नहीं मिली, किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिली या किसी प्रयास का परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं है। साथियों, हर असफलता हमारे सामने एक सवाल रखती है।
1: जी हाँ,
0: और वो सवाल है कि अब तुमने इससे क्या सीखा है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, युवाओं के लिए ये बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय में हम तुरंत सफलता चाहते हैं। युवाओं सोशल मीडिया पर किसी की उपलब्धि देखते हैं तो लगता है कि दूसरे लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जागृति जी, हम ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितने प्रयास हैं, कितनी गलतियां हैं और कितनी असफलताएं छिपी हुई हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि समय हमें सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो मुश्किल है वो कल आसान हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो अवसर हमारे पास है वो शायद कल न हो। इसलिए समय की कद्र करना, सही समय पर सही निर्णय लेना और बीते हुए समय से सीखना जीवन की महत्वपूर्ण कला है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह साथियों, प्रकृति भी हमारी महान शिक्षक है। पेड़ हमें सिखाते हैं कि खुद धूप और गर्मी सहकर भी दूसरों को छाया दी जा सकती है।
0: जी जी।
1: नदी हमें सिखाती है कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरज हमें रोज नई शुरुआत का संदेश देता है और मौसम हमें समझाता है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: कभी हमारे जीवन में आने वाला कोई अजनबी व्यक्ति भी हमारा शिक्षक बन जाता है। किसी मेहनती मजदूर को देखकर हमें परिश्रम की कीमत समझ आती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी किसान से हमें धैर्य और उम्मीद की सीख मिलती है। किसी छोटे व्यवसाय से जोखिम उठाने का साहस मिलता है श्रोताओं। किसी बुजुर्ग से अनुभव की समझ मिलती है और किसी बच्चे से हम बिना किसी चिंता के मुस्कुराना सीख जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है श्रोताओं। शिक्षा केवल किताबों में बंद नहीं है, हमारा हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कोई रिश्ता हमें विश्वास करना सिखाता है तो कभी कोई रिश्ता हमें अपनी सीमाएं तय करना सिखाता है। कभी किसी की मदद हमें इंसानियत समझाती है और कभी किसी की बेरुखी हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर ही रहे हैं कि हमारे जीवन का हर मोड़ हमारे लिए एक शिक्षक है। तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक की हमें जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो शिक्षक कोई भी हो सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। यही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि हमारा हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कोई रिश्ता हमें विश्वास करना सिखाता है, जैसा कि हमने पहले कहा था, और जीवन में आने वाली मुश्किलें भी शिक्षक का काम करती है।
1: बिल्कुल,
0: जब रास्ता आसान होता है कशिश, तो हम शायद अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते, लेकिन कठिन परिस्थितियां हमें अपने अंदर की ताकत से परिचित कराती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमें खुद निर्णय लेने पड़ते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवाओं के जीवन में ये सीख बहुत जरूरी है कि साथियों, हर परिस्थिति को केवल समस्या की तरह नहीं बल्कि सीखने के अवसर की तरह आप देखें।
0: बिल्कुल,
1: अगर कोई गलती हुई है तो खुद को हमेशा दोष देते रहने के बजाय पूछिए कि मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ है श्रोता साथियों, तो भी पूछिए कि मुझे अपनी तैयारी में क्या सुधार करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: अगर किसी ने आपको ठुकराया है तो पूछिए कि मैं अपने आत्मसम्मान और अपने भविष्य को कैसे मजबूत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर श्रोता साथियों, सफलता मिल गई है तो सीखना बंद मत कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सफलता भी जागृति जी हमें जिम्मेदारी, विनम्रता और निरंतर आगे बढ़ने की सीख देती है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, एक अच्छा विद्यार्थी वह नहीं है जो केवल किताबों के प्रश्नों के उत्तर जानता हो, अच्छा विद्यार्थी तो वह है जो जीवन के प्रश्नों से भी सीखना जानता हो।
0: बिल्कुल कशिश, हमें अपने अंदर एक ऐसी नजर विकसित करनी होगी जो हर घटना से सीख खोज सके। इसके लिए जरूरी है श्रोताओं कि हम अपने अनुभव पर विचार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, दूसरों की अच्छी बातों से सीखें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल,
0: आज जब युवा अपने करियर, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यवसाय और भविष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब सीखने की आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो कौशल जरूरी है, हो सकता है आने वाले समय में उसमें बदलाव हो जाए। इसीलिए केवल एक डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, सीखते रहने की क्षमता ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और शायद श्रोता साथियों यही इस विषय का सबसे सुंदर संदेश है।
0: बिल्कुल,
1: कि हमारा जीवन एक खुली किताब है, हर दिन एक नया पन्ना है, हर अनुभव एक नया पाठ है साथियों, और हर मोड़ पर कोई ना कोई शिक्षक हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में आपको कोई कठिन परिस्थितियाँ दिखे तो तुरंत ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक पल रुकिएगा और खुद से ये पूछिएगा कि शायद हो सकता है जिंदगी मुझे कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन वह सीख क्या है श्रोता साथियों? क्योंकि जब परिस्थितियों से सीखना आप शुरू कर देते हैं तब हमारी सोच बदलती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब सोच बदलती है जागृति जी, तो हमारे फैसले बदलने लगते हैं। साथियों, हमारे फैसले बदलते हैं तो हमारा भविष्य भी बदलने लगता है।
0: बिल्कुल कशिश, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हमें जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है। साथ ही युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हमें हर गलती को सीख में बदल देना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: गलती होना अंत नहीं है श्रोताओं, लेकिन सुधार की शुरुआत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हमेशा असफलता से आप डरे नहीं, क्योंकि असफलता हमें हमारी तैयारी और कमियों का पता देती है। अपने आसपास के लोगों से जरूर आप सीखिए, हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनुभव जरूर होता है। समय का सम्मान करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा साथ रहती है।
1: जी हाँ,
0: सवाल पूछने से डरे नहीं, जिज्ञासा सीखने की पहली सीढ़ी है श्रोता साथियों। जिस दिन सवाल पूछने से हम डर गए, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आप अपनी संगति अच्छी चुनें, क्योंकि जैसी संगति हमारी होगी वैसा हमारा भविष्य होगा।
1: बिल्कुल,
0: और वैसा ही हमारा करियर होगा। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और आदतों को प्रभावित करते हैं। प्रकृति को देखें और समझें साथियों, प्रकृति में धैर्य होता है, निरंतरता होती है और संतुलन की अनगिनत सीख छिपी होती है। ये बातें हम प्रकृति से सीख सकते हैं। सफलता के बाद भी विद्यार्थी बने रहे, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें सफलता मिल गई है तो हम बादशाह बन गए, बल्कि हर सफलता के बाद हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हर नए मोड़ को अवसर समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है साथियों कि वही मोड़ आपको आपकी नई दिशा दे रहा हो।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, गुरु केवल वह नहीं जो कक्षा में पढ़ाए, गुरु तो वह भी है जो जिंदगी को समझाए। कभी अनुभव गुरु बनता है तो कभी समय, कभी संघर्ष गुरु बनता है, और कभी हमारी अपनी गलती हमें वह पाठ पढ़ा जाती है साथियों, जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जिंदगी में चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक है, बस जरूरत उस शिक्षक को पहचानने की है और उस सीख को समझने की है। कहा गया है जागृति जी की जो हर अनुभव से सीखता है वही हर मोड़ पर खुद को नया बनाता है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि जीवन के हर मोड़ पर हमें शिक्षक मिलते हैं, उन शिक्षकों से हमें क्या क्या सीखना है वो बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने करी। अब समय का मान रखते हुए हमें विदा लेना होगा, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद। सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है समाज और राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार को लेकर। श्रोता साथियों, ईंट पत्थरों से इमारत बनती है, लेकिन संस्कारों और शिक्षा से राष्ट्र बनता है, और इन संस्कारों को आकार देने वाला व्यक्ति है शिक्षक। तो आज हम जानेंगे शिक्षक दिवस के महत्व को लेकर, बहुत सारी बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं समाज और राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार है शिक्षक को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, जब हम किसी महान राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने उसकी ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, आधुनिक तकनीक और आर्थिक प्रगति की तस्वीरें उभरती है। लेकिन अंजलि, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके भवनों या संसाधनों में नहीं बल्कि उसके नागरिकों के ज्ञान, चरित्र, संस्कार और सोच में होती है। श्रोताओं, ऐसे नागरिकों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति की होती है वो है शिक्षक।
1: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह विद्यार्थी के व्यक्तित्व को दिशा देता है, उनकी प्रतिभा को पहचानता है और उनके भीतर आत्मविश्वास जगाता है और उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता भी प्रदान करता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि इसलिए शिक्षक को समाज और राष्ट्र निर्माण का सच्चा शिल्पकार कहा जाता है। जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व को ज्ञान, अनुशासन, संस्कार और मानवीय मूल्यों से तराश कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि शिक्षक का कार्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं होता है। शिक्षक वो मार्गदर्शक है जो विद्यार्थी को जीवन की राह पर आगे बढ़ना सिखाता है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षक बताते हैं कि सफलता केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का नाम नहीं है श्रोताओं, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के भीतर प्रश्न पूछने की आदत, सीखने की जिज्ञासा, तर्क करने की क्षमता और समस्याओं का समाधान खोजने का साहस पैदा करते हैं। ये विद्यार्थी को विश्वास दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, निरंतर प्रयास से ही आगे बढ़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है और उन व्यक्तियों के विचारों और व्यवहार को शिक्षक प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज को प्रभावित करता है। विद्यालय में शिक्षक जो है वो बच्चों को केवल विषयों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे उन्हें सहयोग, समानता, भाईचारा, अनुशासन, स्वच्छता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जैसे गुण भी सिखाते हैं।
0: जी हाँ,
1: यही जो बच्चे होते हैं वो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, वैज्ञानिक, अधिकारी, उद्यमी, कलाकार और जनप्रतिनिधि बनते हैं। इस प्रकार आज शिक्षक जिस विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, वही विद्यार्थी जो है वो कल समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए शिक्षक द्वारा बोया गया ज्ञान और संस्कार का बीज आने वाले वर्षों में पूरे समाज को प्रभावित करता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कहा गया है कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी को शिक्षित करता है, लेकिन एक शिक्षित विद्यार्थी पूरे समाज को भी बदल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं आपसे ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्र का निर्माण प्रत्येक नागरिक की सोच, कर्म और जिम्मेदारी से होता है। शिक्षक इन जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करने का कार्य करता है, साथ ही देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे।
1: बिल्कुल,
0: जो संविधान, लोकतंत्र, पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति और सामाजिक सद्भाव का सम्मान करे, जो देश की समस्याओं को समझे और उनके समाधान में अपना योगदान दे। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करता है। वो उन्हें समझाता है कि देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्व मनाने या राष्ट्रगान गाने तक सीमित नहीं है। ईमानदारी से अपना कार्य करना, कानून का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, दूसरों की मदद करना और समाज के प्रति जिम्मेदार रहना भी सच्ची देशभक्ति है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शिक्षक जो है वो चरित्र निर्माण का निर्माता भी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ज्ञान मनुष्य को सक्षम बनाता है, लेकिन चरित्र उसे महान बनाता है।
0: जी हाँ,
1: शिक्षा तभी सार्थक है श्रोता साथियों जब उसके साथ अच्छे संस्कार भी विकसित हो। शिक्षक अपने आचरण से विद्यार्थियों को सिखाता है कि यदि शिक्षक समय का पालन करता है, ईमानदारी से कार्य करता है और सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करता है, कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहता है, तो विद्यार्थी भी उससे प्रेरणा लेता है। इसलिए शिक्षक की भूमिका एक आदर्श के रूप में भी होती है। उनका व्यवहार, भाषा, दृष्टिकोण विद्यार्थी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहते हैं कि एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। वो जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति या अन्य सामाजिक अंतर से ऊपर उठकर प्रत्येक युवा साथियों को सीखने का समान अवसर देता है। और हम कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय वो स्थान है जहाँ कई पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ सीखते हैं। शिक्षक उनमें ये भावना विकसित कर सकते हैं कि सभी मनुष्य समान है और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का अधिकार है। अंजलि, यही सोच आगे चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जिसमें सहयोग, भाईचारा और सामाजिक समरसता मजबूत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत चल रही है समाज और राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार हैं शिक्षक को लेकर, जिसमें श्रोता साथियों हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करें कि शिक्षक और पर्यावरण संरक्षण की क्या भूमिका है। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षक विद्यार्थियों को पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, स्वच्छता और प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूक कर सकता है। विद्यालय में छोटे छोटे प्रयास बच्चों के व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनता है जागृति जी, तो वो अपने परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही हम बात करते हैं बदलते समय में शिक्षक की भूमिका को लेकर। तो आज का युग तेजी से बदल रहा है। हम देखते हैं कि डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा किए हैं। विद्यार्थी अब केवल किताबों और शिक्षक तक सीमित नहीं है, उनके पास जानकारी के बहुत सारे स्रोत भी है। ऐसे समय में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सही जानकारी पहचानना, उसका विश्लेषण करना और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना सिखाना भी है। इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सही नहीं होती है श्रोताओं। शिक्षक विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करके उन्हें गलत सूचना, अफवाह और भ्रामक सामग्रियों से बचने की क्षमता दे सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ तकनीक शिक्षा को आसान और प्रभावी बना सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तकनीक शिक्षक का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकती। मशीन जानकारी दे सकती है, लेकिन मानवीय संवेदना, प्रेरणा, नैतिक मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग का महत्व अलग है।
1: जी हाँ।
0: एक शिक्षक विद्यार्थी की आंखों में छिपी चिंता को पहचान सकता है, उसकी प्रतिभा को समझ सकता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यही मानवीय संबंध शिक्षा को जीवंत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए भविष्य की शिक्षा में तकनीक के साथ शिक्षक की भूमिका को और मजबूत करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि अनुशासन जीवन में सफलता की आधारशिला है। शिक्षक विद्यार्थियों को समय का महत्व, नियमितता, जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। लेकिन श्रोताओं, अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है। वास्तविक अनुशासन तो वो है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को समझकर सही कार्य करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ साथ ही आपको बताएंगे कि शिक्षक और पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। यानी कि आज का पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता बन चुका है अंजलि। आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, स्वच्छता और प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ये छोटे छोटे जो प्रयास है वो अगर हम बचपन से बच्चों में डालेंगे तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं।
0: जी जी।
1: और जब विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनता है अंजलि, तो वो अपने परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है शिक्षक और वैज्ञानिक सोच की।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, राष्ट्र की प्रगति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ी हुई है। अंधविश्वास, अफवाह और बिना प्रमाण किसी बात को स्वीकार करने के बजाय तथ्यों और तर्क के आधार पर सोचने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, वह उन्हें प्रयोग करने, गलतियों से सीखने और नए समाधान खोजने का अवसर देता है। यही वैज्ञानिक सोच आगे चलकर नए आविष्कारों और नवाचारों का आधार बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, लेकिन युवा शक्ति को सही दिशा मिलना आवश्यक है। शिक्षक युवाओं को उनके लक्ष्य निर्धारित करने, समय का सदुपयोग करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आज के युवा के सामने शिक्षा, रोजगार, तकनीक और सामाजिक बदलाव से जुड़े अनेक अवसर और चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षकों ने केवल नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने कौशल को विकसित करने, नए अवसर खोजने और समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा दे सकता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, एक जो शिक्षक की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भूमिका उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है अंजलि। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षमताएं, बदलती तकनीक, नए सामाजिक परिवेश और बढ़ती शैक्षणिक अपेक्षाएं शिक्षक के सामने कई सारी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ऐसे में जो शिक्षक है उनका निरंतर सीखते रहना बहुत जरूरी है। एक अच्छा शिक्षक स्वयं भी विद्यार्थी बना रहता है, वो नई तकनीक सीखता है, नए विचारों को अपनाता है और अपनी शिक्षण पद्धति को समय के अनुसार विकसित करता है। किसी समाज की प्राथमिकताओं का पता इस बात से चलता है साथियों कि वो अपने शिक्षकों का कितना सम्मान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षक के सम्मान का अर्थ केवल शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं देना नहीं है। वास्तविक सम्मान तो तब है श्रोताओं, जब समाज शिक्षा और शिक्षक की भूमिका को गंभीरता से समझता हो, शिक्षक को उचित संसाधन, सम्मानजनक कार्य वातावरण और अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के अवसर मिलने चाहिए।
0: जी जी।
1: क्योंकि शिक्षक मजबूत होगा तो शिक्षा मजबूत होगी, और शिक्षा मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षक राष्ट्र निर्माण का शिल्पकार है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन विद्यार्थी उस निर्माण की जीवंत शक्ति है, इसलिए विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षक की सीख को जीवन में उतारना चाहिए। अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही ईमानदार, संवेदनशील, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनना भी आवश्यक है। शिक्षक की सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब उसका विद्यार्थी उससे आगे बढ़कर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि शिक्षक समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करने वाला शिल्पकार है, जिसका कार्य दिखाई भले ही तुरंत न दे, लेकिन उसका प्रभाव पीढ़ियों तक दिखाई देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि राष्ट्र को मजबूत सड़कें, आधुनिक तकनीक और विकसित अर्थव्यवस्था जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यकता चरित्रवान, शिक्षित, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों की भी है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में श्रोताओं, नागरिकों के निर्माण की शुरुआत विद्यालय से होती है और विद्यालय के केंद्र में होता है शिक्षक। इसलिए शिक्षक को केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति समझना उसके महत्व को छोटा करना है।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक वास्तव में भविष्य का निर्माता है। वो आज के बच्चों में कल के भारत की तस्वीर देखता है और उन्हें ज्ञान, संस्कार तथा सही दिशा देकर उस तस्वीर को साकार करने का प्रयास करता है। कहा गया है कि शिक्षक की कलम से निकलता ज्ञान बनाता है देश का महान इंसान। जिस राष्ट्र के शिक्षक को सम्मानित, वही राष्ट्र बनता है सशक्त और समृद्ध। इसीलिए अंत में यही कहेंगे कि शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वो जीवन पढ़ाता है।
0: बिल्कुल।
1: केवल विद्यार्थी नहीं बनाता, वो नागरिक बनाता है, और केवल नागरिक नहीं बनाता, वो राष्ट्र के भविष्य को आकार देता है। इसीलिए श्रोताओं, शिक्षक वास्तव में समाज और राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक कोई प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नु दूध ज पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानु दूधस पीवू है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

0: भाई बहनों अड़स की थाते अवे कार्यक्रम घूमर तकी अमे पड़ा सूट। आशा कर रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी आप तक से भी बातें रही है या आपने कमी होगा तो आपने मरो आसनु कार्यक्रम केव लगे इन बारा में आप रह सुझाओ अमने आली सको अमरे अणपता माते।
1: होवे बहनों लखी लो अमारू पतु अमारू पतु हे कार्यक्रम घूमर वाघ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाघधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारू पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारा फोन नंबर माती। अमारू फोन नंबर है 9414082643।
0: एने साथे भाईन बुनो आप अमारी ईमेल आईडी भी लखी लो एने माध्यम तकी भी आप अपना राय सुझाव मने आली शको। अमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो भाईन बुनो फेरे मलंगा अनास कार्यक्रम में अनास टेम माते एक नवा विषय ने हाती तार हुदी
2: राम राम राम राम, राम, राम।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने कने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मलीने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: सेहत नु राज हूं है बोन।

साथियों, हर हुनर रोजगार नहीं बनता, लेकिन हर हुनर जीवन को बेहतर जरूर बनाता है। जी हाँ श्रोता साथियों, कुछ शौक कमाई के लिए नहीं बल्कि मन की मुस्कान के लिए होते हैं। जिस दिन हर खुशी को कमाई से जोड़ दिया जाएगा, उस दिन शौक नहीं केवल काम बचेंगे, और जिस जीवन में केवल काम रह जाएगा वहाँ मन धीरे धीरे थकने लगता है।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बार फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी करियर, हमारी सफलता, हमारी खुशी, संतोष, अनुशासन, कई सारी चीजों को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। तो आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि क्या हर शौक का करियर बनाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अक्सर यह सलाह सुनने को मिलती है कि अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लो। यह विचार कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन क्या यह हर व्यक्ति पर लागू होता है? क्या हर शौक को रोजगार में बदल देना ही सही रास्ता है, या कुछ शौक ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम केवल अपने मन की खुशी के लिए जिए? आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानते हैं शौक यानी कि हमारी रुचि क्या होती है। तो श्रोता साथियों, शौक वह है जिसे हम बिना किसी दबाव के अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी को गीत गाना अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना तो किसी को बागवानी करना, किसी को किताबें पढ़ना तो किसी को खाना बनाना, किसी को लोक गीत या लोक नृत्य सीखना पसंद है। इन कामों में हमें आनंद मिलता है क्योंकि इन्हें करने के पीछे कोई मजबूरी नहीं होती। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इन्हीं सारी चीजों पर कमाई का दबाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के कारण आज हर शौक को करियर बनाने की बातें बहुत होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अच्छा खाना बनाता है तो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर चैनल बना लो। अगर कोई अच्छा गाता है तो उसे बोल देते हैं कि एल्बम निकालो। अगर कोई अच्छा फोटो खींचता है तो उसे कह देते हैं कि फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर दो। अगर कोई अच्छा लिखता है उसे कहते हैं कि पैसा बना लो। लेकिन क्या हर शौक का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही होता है? जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर कला का मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता। कुछ हुनर दिल को सुकून देने के लिए होते हैं। जब शौक पर केवल कमाई का बोझ आ जाता है तो कई बार आनंद पीछे छूट जाते हैं। तो श्रोता साथियों, अब यही बात आती है कि जब शौक जिम्मेदारी बन जाए तब क्या करें? तो कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपको चित्र बनाना बहुत पसंद है। आप रोज मन से चित्र बनाते हैं, लेकिन यदि वही काम रोज समय पर पूरा करना पड़े, ग्राहकों की पसंद के अनुसार बनाना पड़े, कमाई की चिंता से जुड़ जाए, तो संभव है कि वही आपकी जो रुचि है वो धीरे धीरे तनाव का कारण बनने लगती है। हर व्यक्ति इस बदलाव को सहजता से नहीं अपना पाता है और बहुत सी बार जिस काम को एक समय उन्हें बहुत करना पसंद होता है वही काम धीरे धीरे उनके लिए बोझ बनने लग जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी रुचि के असली उद्देश्य को समझिए। जी हाँ, हर रुचि हमें गहरा उद्देश्य देती है। इससे हमारा मन हल्का होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, तनाव कम होता है, खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिल पाता है और जीवन में जो है संतुलन बना रहता है। यदि हमारी रुचि यह सब कर रही है तो वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, चाहे उससे एक रुपया भी हमें क्यों न कमाने को मिले। श्रोता साथियों, देखते हैं कि आज कई माता पिता बच्चों के हर शौक को प्रतियोगिता बना देते हैं। बच्चों को नृत्य पसंद है तो तुरंत प्रतियोगिता, गाना पसंद है तो तुरंत मंच, चित्रकला पसंद है तो तुरंत पुरस्कार की तैयारी। धीरे धीरे बच्चा आनंद के लिए नहीं परिणाम के लिए काम करने लगता है और कई बार उसकी रुचि से वह दूर हो जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, हर प्रतिभा को मंच चाहिए होता है, लेकिन हर मंच प्रतियोगिता नहीं होता। यदि आपकी रुचि इतनी मजबूत है कि आप उसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह निर्णय केवल उत्साह से नहीं, तैयारी, मेहनत और वास्तविक परिस्थितियों को समझ कर लेना चाहिए। और यदि आपने अपने रुचि को केवल अपनी खुशी के लिए ही बचा कर रखा है तो इसमें कोई भी कमी नहीं है। दोनों ही रास्ते सम्मान के योग्य हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हर शौक हमेशा करियर नहीं होता, ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में हमारे शौक यानी कि हमारी रुचि को समझने की जरूरत है और किस तरीके से हमेशा वह एक करियर का रास्ता नहीं हो सकती है। श्रोता साथियों, कुछ लोग सुबह पौधे की देखभाल करते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ लोग बांसुरी बजाते हैं, तो कुछ लोग गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं। इसमें से हर काम से पैसा नहीं मिलता, लेकिन इनसे मिलने वाला जो संतोष है वो कई बार धन से भी बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, हर काम का लाभ बैंक खाते में नहीं दिखता, कुछ लाभ मन की शांति में दिखाई देते हैं। जिस शौक को आप बचा कर रख रहे हैं वही कई बार आपको जीवन की थकान से बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, यदि शौक और करियर एक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ऐसा न हो तो भी जीवन अधूरा नहीं होता। जरूरी यह है कि आप अपने शौक को पूरी तरह न छोड़ दें, हर सप्ताह थोड़ा समय उस काम के लिए निकालो जो आपको भीतर से खुशी देता है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग केवल कमाई नहीं बल्कि अपनी रुचियों को भी महत्व देते हैं ना, तो समाज अति कृष्णात्मक बनता है। कहते हैं ना कि लोक कला बचती है, संगीत जीवित रहता है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, चित्र बनते हैं, बच्चों को प्रेरणा मिलती है। यानी कि रुचि केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, हर शौक को करियर बनाना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा एक काम जरूर हो जिसे वह बिना किसी दबाव, बिना किसी तुलना, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के केवल अपनी खुशी के लिए कर सके। कमाई जीवन की आवश्यकता है, लेकिन मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। यदि दोस्तों हम हर रुचि को केवल आय का साधन बना देंगे तो शायद धीरे धीरे जीवन से सहज आनंद कम होता जाएगा। इसलिए अपनी रुचि का सम्मान कीजिए, यदि वह करियर बन सके और आप तैयार हो तो आगे बढ़िए, यदि नहीं तो उसे जीवित रखिए, क्योंकि वही रुचि कठिन समय में आपके चेहरे पर मुस्कान लुटाने का कारण बन सकती है। कहते हैं ना कि हर सपना नौकरी नहीं बनता, हर रुचि व्यवसाय नहीं बनती, बल्कि हर सच्चा शौक इंसान को बेहतर जरूर बनाता है। कमाने के लिए काम कीजिए, लेकिन जीने के लिए अपनी रुचि को बचा कर रखिए, क्योंकि जीवन केवल रोटी कमाने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि मन को जीवित रखने का नाम भी है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों आपको कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे लिए यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन का हर निर्णय केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मूल्य रुपये पैसे से नहीं बल्कि हमारे मन की शांति, आत्मसंतोष और जीवन की गुणवत्ता से तय होता है। कहते हैं ना कि शौक भी उन्हीं अनमोल चीजों में से एक है। यदि हम हर रुचि को केवल करियर और कमाई की दृष्टि से देखने लगे तो धीरे धीरे जीवन का वह सहज आनंद खो सकता है जो हमें भीतर से जीवंत बनाए रखता है। आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा अक्सर आय, पद और प्रसिद्धि से जुड़ी जाती है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि बहुत से लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बाद भी अपने लिए कुछ समय निकालने की तलाश में रहते हैं। जी हाँ, इसका कारण यही है कि इंसान केवल काम करने के लिए नहीं बना बल्कि महसूस करने, सीखने, सृजन करने और अपने मन को अभिव्यक्त करने के लिए भी बना है। यदि जीवन में केवल जिम्मेदारियां हो और मन को खुशी देने वाली गतिविधियां न हो तो धीरे धीरे जीवन एक मशीन की तरह लगने लगता है। जी हाँ, हम अपने बच्चों को भी यह सिखाएं श्रोता साथियों कि हर रुचि का उद्देश्य प्रतियोगिता जीतना या पैसा कमाना नहीं होता। कोई बच्चा यदि संगीत सीखता है, चित्र बनाता है, पौधे लगाता है, लोकगीत गाता है या कहानियाँ लिखता है तो पहले उसे उस काम से प्रेम करना सीखने दीजिए। यदि भविष्य में वह उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वह उस शौक को केवल अपने मन की खुशी के लिए जीवित रखना चाहता है तो यह भी उतना ही सम्मानजनक निर्णय है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें हर प्रतिभा से यह प्रश्न पूछना बंद करना होगा कि इससे कमाई कितनी होती है, और यह प्रश्न पूछना शुरू करना होगा श्रोता साथियों कि इससे तुम्हें खुशी कितनी मिलती है, क्योंकि जो काम किसी व्यक्ति को भीतर से संतुष्टि देता है वही उसके व्यक्तित्व को संतुलित, रचनात्मक और संवेदनशील बनाता है। इसलिए दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि हर हुनर बाजार के लिए नहीं होता, कुछ हुनर जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं।
अपने शोक को बचा कर रखिए, क्योंकि वही कठिन दिनों में आपके चेहरे पर मुस्कान, थके हुए मन में नई ऊर्जा और जीवन में नया उत्साह भर सकते हैं। कमाई जीवन चलाती है, लेकिन रुचियां जीवन को महकाती है। इसलिए ऐसा संतुलन बनाइए जहां काम आपकी जिम्मेदारियों को निभाए और आपकी रुचि आपकी आत्मा को जीवित रखे। यही संतुलन एक सफल नहीं बल्कि एक सार्थक और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, गुरु ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, अंधकार से हमें बचाते हैं, सही राह पर चलना सिखाते हैं, शिक्षक ही भविष्य बनाते हैं, किताबों से आगे ज्ञान सिखाते हैं, हर मुश्किल में हौसला बढ़ाते हैं, सपनों को नई उड़ान दिलाते हैं, गुरु जीवन को सुंदर बनाते हैं, शिक्षा से जीवन में उजियारा हो, हर बच्चे का सुंदर भविष्य हमारा हो, गुरु के ज्ञान का सम्मान करें, उनके सपनों को साकार करें। गुरु है तो ज्ञान की पहचान है, गुरु से ही जीवन महान है, उनकी सीख को जीवन में अपनाइए, शिक्षा शिक्षक दिवस को सार्थक बनाइए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्रोता साथियों, आज हमारी बातचीत भी इसी विषय पर रहने वाली है। तो श्रोता साथियों, जरा सोचिए कि जब हम पहली बार स्कूल की चौखट पर कदम रखते हैं, तब हमारे हाथ में किताबें तो होती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि इन किताबों में छिपे ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है। हमें अक्सर पहचानना सिखाने वाला, सही गलत में अंतर सिखा समझाने वाला, गिरने पर उठाना, हार के बाद फिर कोशिश करना सिखाने वाला कोई और नहीं होता, वह होते हैं हमारे शिक्षक। शिक्षक केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला व्यक्ति नहीं होता मनीषा, वह हमारे सपनों को पहचानता है, हमारी कमियों को सुधारता है और हमारी क्षमताओं पर हमसे पहले विश्वास करता है। इसलिए हर साल 5 सितंबर यानी आज के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: यह दिन केवल शिक्षकों को शुभकामनाएं देने या फूल देने का दिन नहीं है, बल्कि उस योगदान को याद करने का अवसर है जो शिक्षक हमारे जीवन और समाज के निर्माण में देते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस प्रकार श्रोता साथियों अंधेरे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को दीपक रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार शिक्षक हमारे जीवन को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। शिक्षक हमें केवल पढ़ाना लिखाना ही नहीं सिखाते साथियों, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत, आत्मविश्वास और मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं साथियों कि माता पिता हमें जन्म देते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन श्रोता साथियों शिक्षक हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। वे हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमारी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक को समाज का निर्माता और भविष्य और राष्ट्र का भविष्य भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं साथियों कि भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर यानी कि श्रोता साथियों आज ही के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस श्रोता साथियों शिक्षकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है।
1: बिल्कुल मनीषा, भारत में शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति गहरा विश्वास था। जब उनके विद्यार्थी और प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने अपने जन्मदिन को व्यक्तिगत उत्सव के रूप में मनाने के बजाय शिक्षकों के सम्मान के दिन के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त की। इसी भावना से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा मजबूत हुई। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की प्रगति केवल बड़ी इमारतों, सड़कों और तकनीक से नहीं, देश की असली ताकत उसके शिक्षक, जागरूक और संस्कारी नागरिक में होती है। और ऐसे नागरिक को तैयार करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: बिल्कुल
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, जीवन बनाते हैं। एक अच्छा शिक्षक केवल यह नहीं बताता कि किताब में क्या लिखा है, वह यह भी सिखाता है कि जीवन की किताब कैसे पढ़नी है। जब बच्चा गणित में गलती करता है तो शिक्षक उसे दोबारा कैसे समझाए, जब बच्चा परीक्षा में कम अंक लाता है तो शिक्षक उसे निराश होने के बजाय मेहनत करने के लिए प्रेरित कैसे करें, जब बच्चा किसी समस्या में उलझता है तो शिक्षक उसे समाधान खोजने की राह दिखाता है। कई बार शिक्षक की कही हुई एक छोटी सी बात विद्यार्थी के पूरे जीवन की दिशा बदल देती है।
0: जी हाँ।
1: किसी बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना दिखाई देता है, किसी को शिक्षक बनने का, किसी को किसान बनकर नई तकनीक अपनाने का, तो किसी को सेना में जाने का, तो किसी को अपने गांव में रहकर समाज के लिए काम करने का।
0: बिल्कुल,
1: इन सपनों को उड़ान देने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है शिक्षक।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बच्चा श्रोता साथियों जब विद्यालय में प्रवेश करता है, तब उसके जीवन में शिक्षक का स्थान है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षक उसे ज्ञान और व्यक्तित्व विकास

0: क्लास में मदद करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि शिक्षक हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं। वे हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और जो अन्य विषय होते हैं उनकी शिक्षा देते हैं। हम देखते हैं साथियों कि पुस्तकों में जानकारी लिखी होती है, लेकिन उसी जानकारी को सरल भाषा में समझाने का काम ही वो शिक्षक करते हैं। वे कठिन विषयों को उदाहरण देकर समझाते हैं हमें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को केवल उत्तर याद नहीं करवाता है, बल्कि उसे यह समझाता है कि किसी भी बात का क्या कारण है और हमारे जीवन में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमें सिखाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें स्वस्थ, स्वच्छता, पर्यावरण, बाल अधिकार, लैंगिक समानता, संविधान, मतदान और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक भी कर सकता है। एक बच्चा स्कूल में जो सीखता है वह अक्सर अपने घर तक लेकर जाता है। अगर बच्चा सीखता है कि हाथ धोना जरूरी है तो वह घर में भी माता पिता और भाई बहनों को बताता है। अगर बच्चा सीखता है कि पानी बचाना चाहिए तो वह परिवार को समझाता है। अगर बच्चा सीखता है कि बेटा और बेटी दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए तो यह सोच धीरे धीरे पूरे समाज में बदलाव ला सकती है। इस तरह एक शिक्षक केवल एक विद्यार्थी को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता। एक शिक्षक विद्यार्थी की सफलता में खुशी महसूस करता है, वह उसकी असफलता से उसे संभालता है, वह उसकी प्रतिभा को पहचानता है और उसे आगे बढ़ने का अवसर देता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन इस रिश्ते में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षक का सम्मान करे, केवल शिक्षक दिवस पर फूल देकर नहीं बल्कि पूरे वर्ष उनके बताए रास्ते पर चल कर किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: समय पर स्कूल जाना, मन लगाकर पढ़ना, अनुशासन रखना, सहपाठियों की मदद करना और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करना, यही शिक्षक के प्रति सच्चा सम्मान है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं मनीषा बात करें शिक्षक दिवस हमें क्या संदेश देता है। तो श्रोता साथियों, शिक्षक दिवस हमें तीन महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, ज्ञान का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज्ञान ही हमें अज्ञानता और गलत सोच से बाहर निकालता है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा है, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को दिशा देने में अपना समय और अनुभव लगाया है। तीसरी बात है, जो सीखा है उसे आगे बांटें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं। एक शिक्षक की मेहनत का परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। आज जिस बच्चे को वह अक्षर ज्ञान दे रहे हैं मनीषा, हो सकता है कि वही बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, वैज्ञानिक, कलाकार, अधिकारी या समाज सेवी बनकर देश की सेवा करे। इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक का सम्मान केवल एक दिन का सम्मान नहीं होना चाहिए। शिक्षक का सम्मान हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। और याद रखिए कि जिस समाज में शिक्षक का सम्मान होता है वहाँ ज्ञान का सम्मान होता है, और जहाँ ज्ञान का सम्मान होता है वहाँ विकास की राह कभी बंद नहीं होती।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन में कई बार विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, शिक्षक उनका मार्गदर्शन बनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, क्षमताओं को समझकर उचित सलाह देते हैं। वे बताते हैं कि विद्यार्थी को किस क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ही वो शिक्षक मार्गदर्शक बन जाते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि शिक्षक है वो हमारे चरित्र निर्माण में भी सहायता करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना भी श्रोता साथियों शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
0: जी हाँ।
1: शिक्षक विद्यार्थी को सत्य बोलना, ईमानदार रहना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना और जरूरतमंदों की सहायता करना सिखाते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है श्रोता साथियों, लेकिन यदि उसमें अच्छे संस्कार नहीं है तो उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, इस शिक्षक दिवस पर हम केवल अपने गुरुजनों को शुभकामनाएं न दें, बल्कि उनके दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अपने शिक्षक को धन्यवाद कहें, उनके संघर्ष को समझें, उनकी सीख को आगे बढ़ाएं और ऐसा समाज बनाएं जहां हर बच्चा शिक्षा से जुड़े और हर शिक्षा सम्मान के साथ अपना दायित्व निभा सके। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम कार्यक्रम के माध्यम से दे ही रहे हैं, और यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस हमें केवल इतना याद नहीं दिलाता कि हमारे जीवन में शिक्षक का स्थान कितना ऊंचा है, बल्कि यह हमें सोचने का असर भी देता है कि हम शिक्षा और ज्ञान को अपने जीवन में किस तरह उपयोग की बना सकते हैं। किसी शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होती कि उसके विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। उसकी असली सफलता तब होती है जब उसका विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना सीखे, दूसरों का सम्मान करे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखे। हमारे आसपास ऐसे अनेक शिक्षक होते हैं मनीषा, जो सीमित साधनों के बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, छोटे विद्यालयों में कई शिक्षक रोज बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं। उनके लिए हर विद्यार्थी केवल एक नाम या रोल नंबर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा भविष्य होता है जिसे सही दिशा की जरूरत होती है। शिक्षक हमें ये समझने में मदद करते हैं कि असफलता अंत नहीं है। परीक्षा में कम अंक आ सकते हैं, किसी प्रतियोगिता में हार हो सकती है, किसी काम में बार बार गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश छोड़ देना समाधान नहीं है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के भीतर दोबारा प्रयास करने का साहस पैदा करता है। आज शिक्षक का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। मोबाइल और इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान के अनेक रास्ते खोल दिए। विद्यार्थी कुछ ही समय में दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जानकारी और सही ज्ञान में अंतर समझना भी जरूरी है। ऐसे समय में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक विद्यार्थी को यह सिखाता है कि कौन सी जानकारी उपयोगी है, किस पर विश्वास करना चाहिए और मिली हुई जानकारी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करना है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन ही बहुत जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थी को समय पर विद्यालय आने, समय पर गृह कार्य करने और नियमों का पालन करने की आदत डालते हैं। अनुशासन से श्रोता मेरा साथी हो, विद्यार्थी अपने समय का सही उपयोग करना सीखता है वह अपने काम को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना सीखता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बाद में यही अनुशासन हमारे जीवन और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए सहायक बन जाता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कई विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनमें से श्रोता साथियों आत्मविश्वास कई विद्यार्थियों में कम होता है। वे कक्षा में प्रश्न पूछने या मंच के सामने बोलने से डरते हैं। ऐसे समय में श्रोता साथियों विद्यार्थियों को शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। शिक्षक के प्रोत्साहन से श्रोता साथियों विद्यार्थी अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानते हैं और उसका आत्मविश्वास है वो भी मजबूत होता है।
0: जी हाँ मनीषा, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, शिक्षा हमें बेहतर इंसान बनाने का माध्यम भी है। यह हमें सवाल पूछना, तर्क करना, अपनी बात रखना और दूसरों की बात समझना सिखाती है। जब शिक्षा के साथ संस्कार, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जुड़ती है तभी उसका वास्तविक प्रभाव दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए शिक्षक दिवस पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शिक्षक से मिली सीख को केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रखेंगे। यदि हमारे उनसे स्वच्छता सीखी है हमने उनसे, तो अपने आंगन और गांव को भी स्वच्छ रखने में

0: के शिक्षक है वो राष्ट्र के निर्माता हैं। इसके पीछे श्रोता साथियों बहुत बड़ा कारण ही आज बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो भविष्य के देश के नागरिक बन रहे हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा और कोई श्रोता साथियों शिक्षक बनेगा। सभी के निर्माण में शिक्षकों का यही योगदान होता है। श्रोता साथियों यदि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलेंगे तो हम देखते हैं कि देश को योग्य और ईमानदार नागरिक मिलेंगे। इसलिए श्रोता साथियों शिक्षक वास्तव में देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब जैसा कि बातें बहुत सारी हो गई हैं और गीत संगीत का कार्यक्रम के माध्यम से दस्तूर हमारा बना रहता है, तो क्यों ना एक और प्यारा सा गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे शिक्षक दिवस को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी बात करें शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बहुत विशेष होता है। यह संबंध ज्ञान, सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि विद्यार्थी को अपने जीवन का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात, शिक्षक की बातों को सुनना चाहिए। शिक्षक का भी विद्यार्थी के जीवन में प्रेम और धैर्य का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथियों, हम देखते हैं कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को डरा कर नहीं बल्कि समझा कर पढ़ाता है। वह उसकी गलतियों को सुधारता है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देता है। कई बार श्रोता साथियों, अपने शिक्षकों को जीवन भर हम याद रखते हैं। जब वे बड़े होकर सफलता प्राप्त करते हैं तो अपने शिक्षकों को उस सफलता का हिस्सा मानते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही शिक्षकों के बताए अनुसार नियम, अनुशासन, धैर्य और साथ ही किस तरीके से पढ़ाई का हमें समय रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वाली जो चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखने की जरूरत है। श्रोता साथियों, किसी भी समाज का भविष्य इस बात से तय होता है कि वह अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे शिक्षा और कैसे सोच देता है। इस निर्माण में शिक्षक की भूमिका बहुत ही गहरी होती है, क्योंकि मनीषा, शिक्षक बच्चों को केवल विषयों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जिम्मेदारी कैसे निभानी है, अनुशासन में कैसे रहना है, संवेदनशीलता कैसे बनाए रखनी है, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है, जैसी खूबियां विकसित करने में भी योगदान देते हैं।
0: जी हाँ।
1: एक बच्चा जब विद्यालय आता है तब उसके भीतर अनेक सवाल, सपने और संभावनाएं होती हैं। शिक्षक उन संभावनाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा देने का काम करते हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी की पढ़ाई में अधिक रुचि होती है तो किसी के खेल में, किसी की कला में तो किसी की अन्य हुनर में। एक समझदार शिक्षक इन अलग अलग क्षमताओं को पहचान कर बच्चों को अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर देता है।
0: जी हाँ।
1: आज के समय में बच्चों के सामने अवसर भी बहुत है और चुनौतियां भी। सोशल मीडिया, इंटरनेट, बदलती जीवन शैली और प्रतियोगिता के बीच उन्हें सही निर्णय लेना सीखना जरूरी है। ऐसे समय में शिक्षक बच्चों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकते हैं। वे उन्हें केवल सफलता की दौड़ में नहीं बल्कि सही मूल्यों के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीजों को भी सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों के विकास में माता पिता और शिक्षक दोनों की भूमिका होती है। माता पिता घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं और संस्कार देते हैं। श्रोता साथियों, शिक्षक विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं और सामाजिक ज्ञान सिखाते हैं। यदि माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चे का मार्गदर्शन करें श्रोता साथियों, तो बच्चे का विकास है वो बेहतर तरीके से होता है। माता पिता को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और बच्चे की शिक्षा से संबंध में शिक्षक से सहयोग लेना चाहिए। इसी प्रकार श्रोता साथियों, शिक्षक को भी बच्चे की प्रगति और समस्याओं के बारे में माता पिता से बातचीत करनी चाहिए। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि दोनों का उद्देश्य बच्चे के भविष्य, उज्जवल भविष्य का ही काम करते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि शिक्षक को अपने विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तभी श्रोता साथियों वो विद्यार्थियों को उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हम कहना चाहेंगे साथियों कि एक शिक्षक को भी हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का सम्मान करना चाहिए। किसी को जल्दी समझ नहीं आता है साथियों, किसी को अधिक समय लगता है, इसलिए श्रोता साथियों, शिक्षक को धैर्य बनाकर रखने की भी आवश्यकता है।
1: जी हाँ मनीषा, शिक्षक का प्रभाव विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहता। एक जागरूक विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वो अपने माता पिता को नई जानकारी दे सकता है, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद कर सकता है और गाँव के अन्य बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है।
0: जी हाँ।
1: इस तरह शिक्षा धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और फिर पूरे समाज तक पहुंचाती है। इसलिए हमें शिक्षक दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रम बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन विद्यालयों में बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि शिक्षा का अर्थ केवल अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, शिक्षा का अर्थ सोचने की क्षमता विकसित करना, सही निर्णय लेना, दूसरों के प्रति सम्मान रखना और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना है। साथियों, शिक्षक हमारे जीवन में दिशा दिखाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, लेकिन शिक्षा की यात्रा में विद्यार्थी की अपनी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। शिक्षक रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना विद्यार्थी को स्वयं सीखना होता है। इस शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान को एक दिन तक सीमित नहीं रखें मनीषा, उनकी सीख को अपने व्यवहार में दिखाई देने दें, अपने विद्यालय का सम्मान करें, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की मदद करें, पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझें और अपने ज्ञान का उपयोग अपने परिवार, ज्ञान और समाज की भलाई के लिए करें, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा केवल एक व्यक्ति का भविष्य नहीं बदलती बल्कि उसके माध्यम से पूरे परिवार और समाज की दिशा भी बदल सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी हमारे श्रोता साथियों से ये बातें ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, जब हम अपने जीवन के बीते हुए वर्षों को याद करते हैं तो हमें कई ऐसे चेहरे याद आते हैं जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन किया। विद्यालय की पहली कक्षा से लेकर जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों तक किसी न किसी शिक्षक की बात, सलाह या सीख हमारे साथ जरूर चलती है। कई बार उस समय हमें किसी बात का महत्व समझ नहीं आता, लेकिन वर्षों बाद वही सीख हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि शिक्षक का योगदान इसलिए विशेष है क्योंकि वह विद्यार्थी के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का प्रयास करता है। हर बच्चे की परिस्थिति, रुचि, क्षमता और सीखने का तरीका अलग होता है। किसी बच्चे को पढ़ने में समय लगता है तो कोई जल्दी समझ लेता है, कोई सवाल पूछने में झिझकता है और कोई अपनी प्रतिभा को व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए धैर्य, समय और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक अपने व्यवहार और मार्गदर्शन से मनीषा बच्चों को यह विश्वास दिला सकता है कि वह भी आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
0: ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कि शिक्षक की जिम्मेदारी कई बार और व्यापक हो जाती है। विद्यालय बच्चों के लिए केवल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि नई दुनिया को समझने का माध्यम बन जाता है। शिक्षक बच्चों को उनके आसपास की समस्याओं को समझने, सवाल करने, समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से बच्चों में अपने गाँव में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, प्रकृति और समुदाय के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित की जा सकती है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है तब शिक्षा की भूमिका जो है वो और भी बदल गई है। केवल जानकारी याद कर लेना पर्याप्त नहीं है मनीषा, बल्कि बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि जानकारी का सही उपयोग कैसे किया जाए, दूसरों के विचारों को कैसे समझा जाए और किसी निर्णय के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में कैसे सोचा जाए। इस तरह शिक्षा व्यक्ति को केवल कमजोर नहीं बन इस तरह शिक्षा व्यक्ति को केवल रोजगार के लिए तैयार नहीं करती बल्कि उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने की क्षमता भी देती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का समय विज्ञान और तकनीकी का समय है।
0: बिल्कुल,
1: इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन शिक्षा के कारण विद्यार्थी के लिए ज्ञान प्राप्त करना पहले की तुलना में और आसान हो गया है। आज विद्यार्थी इंटरनेट से कुछ सेकंड में ही विषय को लेकर कई सारी जानकारियां प्राप्त कर लेता है। फिर भी श्रोता साथियों, शिक्षक का महत्व कम नहीं हुआ है। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है श्रोता साथियों, लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती। शिक्षक विद्यार्थी को सही और गलत की जानकारी समझने में, सही और गलत की जानकारी का अंतर समझने में भी मदद करते हैं। हम देखते हैं कि आज शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने वाले व्यक्ति तक नहीं है बल्कि अब विद्यार्थी को सोचने, प्रश्न पूछने, जानकारी का विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का महत्व तब और बढ़ जाता है जब वह असमंजस में होता है।
1: जी हाँ,
0: भविष्य में क्या करना है, कौन सा विषय चुनना है, अपनी कमजोरी को कैसे दूर करना है या असफलता के बाद दोबारा शुरुआत कैसे करनी है, इन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन बहुत मायने रखता है। एक सकारात्मक सलाह कभी कभी विद्यार्थी के आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। यदि हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान, सच्चा सम्मान व्यक्त करना है तो हमें उनके बताए अच्छे मूल्यों को अपने आचरण में लाना होगा। समय की कदर करनी होगी, मेहनत करनी होगी, अनुशासन बनाए रखना होगा, दूसरों की मदद करना और गलत रास्ते से बचना, ये ऐसे व्यवहार हैं जिनसे हम अपने शिक्षकों की मेहनत को सार्थक बना सकते हैं। शिक्षक दिवस हमें यह अवसर भी देता है कि हम शिक्षा के महत्व पर परिवार और समाज में बातचीत करें। हर बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाना, उसकी पढ़ाई जारी रखना, उसे सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण देना केवल शिक्षक की नहीं बल्कि परिवार और पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। जब माता पिता, शिक्षक और समुदाय मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं तब शिक्षा का प्रभाव कहीं अधिक मजबूत बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से शिक्षक दिवस को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन टेलीफोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार
1: साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आज भी आप अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ढेरों फरमाइशें आ ही रही हैं कार्यक्रम के माध्यम से, इसी बीच मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश की गीत हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। गीत के बोल हैं प्यार की कश्ती में और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कोपर गांव से, सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े जी। शिवागा से जुड़ रहे हैं श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक संजना परी जी और स्वाति प्रयागराज जी, लड्डू देविका चौधरी जी। पंडापुर शहर से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह बजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामनान कश्यप जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमन सुमति देवी जी। और विश्रोता साथी नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं प्यार की कश्ती में। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा संगीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बीड शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है संगीत, गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए ये इश्क होता है क्या। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नंद किशोर कटे, संगीता कटे, साक्षी कटे, रामनिवास अग्रवाल, धनेंद्र डोल, पीपी कुलथे जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उम मलिक, आकांक्षा मलिक। गाजियाबाद से शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। इंदौर से जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से खर्चे ललिता खर्चे, नारायण खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना और लदावली से जुड़ रहे हैं। श्रोता साथी संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउलक अब्दुल रहमान डावर, हक डावर अब्दुल रहमान डावर जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। दोस्तों, अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, पैर प्रसिद्धि हीरामन शंडे, प्रतिभा भाई गुणाने जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत श्रोता साथियों आया है, आपको बताना चाहूँगी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह। गीत के बोल हैं, रब को याद करो एक फरियाद करो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। नाम बताना चाहूँगी दोस्तों, छनुला श्रीवास, अनिता, पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, गुड़न श्रीवास, आयुषी श्रीवास, विवेक श्रीवास, करुणा श्रीवास। छत्तीसगढ़ से और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमो, मानस राज। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू तपन्ना भाटिया जी जुड़ना चाह रहे हैं। लोहारा से हैं, छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिरा नेताम। नेहरू चौक पैठन से सुदेश जाधव, नेता जाधव, आरती प्रसाद, सुनल जाधव, बीवी से आ जाधव। सलाना शहर से सोमनाथ, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव। शबीर परवाना जी, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी मधुबनी बिहार से हैं। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना आसा, अक्सा, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, रब को याद करो एक फरियाद करो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है गुलामी। गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन मुकुम बरंजिश। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे नरेश मल्होत्रा, नीटो लक्ष्मण मल्होत्रा, लड़ोकुल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा, रोहतक से पियुष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू भावे कोयल सिक्का, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कुंभार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार जी। जफराबाद से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे यादव, संचित देशमुख, प्रथमेश सर्व, कल्पना सानवी और प्राणी देशमुख जी। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुणा कनोचिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रंजन रज्जक, लालू, सोहना मोहानी, यश और जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निर्मल नवाड़कर, विशाल नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सुपान तायडे, आशीष मोहेरकर जी। आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन मुकुम बरंजिश। तब तक आप बने रहिएगा वगर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है धड़कन। गीत के बोल हैं, दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी हिमाक्ष जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी दोस्तों आपको। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा जुड़ना चाह रहे हैं। ताजवंद अंसारी, गुलाम शाबिराई, मेहराज शाह उत्तराखंड हरिद्वार से और भी साथी जाकोद राजस्थान से, शमदल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खट्टे, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, लक्ष्मी गोस्वामी, शिवन्या, अनु गोस्वामी, मधु गोस्वामी जी, जज्जर हरियाणा से ईटा भाटिया, बिट्टू भाटिया, रजत, मयंका भाटिया, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रुजी केस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, मारवाड़, बिलाड़ा राजस्थान से हैं, परभणी महाराष्ट्र से हैं, रुपेश सिंह, महेश ब्रिगेड, प्रीतेश संगी, पूरा संगी परिवार, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था धड़कन फिल्म का, दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान, गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी। कुरावली से जुड़ रहे हैं फरमाइशकर्ता राशिद हुसैन अंसारी, नौरी नसीन मोहम्मद कैफ अंसारी जी। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं येताला महाराष्ट्र से, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, दुर्गेशी जायसवाल, राखी तृप्ति जायसवाल जी। गंजुडवारा से ही जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त, गंजुडवारा से ही शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान जी। पटियाला से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश भट्टा जी और नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और मनीष जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पाराशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इस सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है वासिम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं से, पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है जुदाई, गीत की बोल है बंसी सजाओ बंसी बजाओ। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और अनुराधा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास और रंजन शाहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पलारी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल ही बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नीतीश कुमार देवगना, दुर्गा प्रसाद देवगना और पराग जी, पूनम राग और कृष्णा जी। और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, विजय, शुभम, पवनजर ये और सजीव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है लोरमी छचेड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अनुराधा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। ऐसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, अक्षय रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वा से अब्दुल गफा डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अनुराधा जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ये धरती चांद सितारे। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती से। फिल्म का नाम है खुददार। गीत के बोल ही मच गया शोर सारी नगरी में। इस गीत की फरमाइश करता है श्याम केटी, वंदना केटी, कार्तिक केटी, भाविका जी केटी और केटी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे बुलेंदखंड से अभी पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश जी पाल, दिव्यांशी बघेल और पाल परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी और आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है डाबकी रोड अकुला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसे भी जुड़ना चाह रहे पटियाकला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमाजी शाहू और सुजीता जी शाहू। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। बुलंदखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। यवतमाल से जुड़ना चाह रहे रामहरी लोखंडे, जंगुताई लोखंडे और सुरेश जी लोखंडे। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मच गया शोर सारी नगरी में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

ਆਇਆ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਰੇ, ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਰੇ, ਆਇਆ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕਾ ਬਾਕਾ ਸਮਾਂ।

गातोरी गगरी आके पीछे टगरी रे, अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे।

शोर तारी नगरी हीरे सारी नगरी हीरे आया फिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया फिरज का

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोल ही वो हरे दुपट्टे वाली। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुषी श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमे सोमू और मानस सिंह राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पंजाब से सुभाष गोद्रा, बिमला गोद्रा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोद्रा। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, तिप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीवी वामिका वानी जी थांदी। गनगोला से जुड़ना चाह रहे हैं इरशद खान, शायरा खान, रफ्यू खान, साबरीन खान, शाहबाज खान, सिफ खान और ईशान जी खान और शाबरी जी बेगम। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। पंजाब से जुड़ना चाह रहे हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है यवतमाल से राहुल मनगवर, सरला जी, विशाल जी, चेतन और रोशनी और बीबी प्रियांशी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोले हो हरे दुपट्टे वाले।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार से। फिल्म का नाम है सोल्जर, गीत के बोल हैं मेरे ख्वाबों में जो आए। इस गीत की फरमाइश करता है मीरा जी ज्योति, रोहतास बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं सोनम और अनामिका जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से प्रेम साई, सोमवा साई, भगत हेमंत, राम लखवान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक, जाकोत राजस्थान से जुड़ रही हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, निशा नामदेव, नेहा नामदेव, नंदनी जी नामदेव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। जगदलपुर बस्तर से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम जी नायडू। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं अब्दुल गफ्फा डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मेरे ख्वाबों में जो आए। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों, यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागर रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: मारु नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दीधु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल एनी माँ नो दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीधु कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूध ज पीवू है
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है
5: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
6: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
5: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवो आ सब एनीमिया ना लक्षण है
6: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
5: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
6: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
5: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
7: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
8: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
9: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
8: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
7: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातें रहने वाली है, जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, किताबें सिर्फ अक्षर सिखाती है मगर जीवन हमें जीना सिखाता है, और जीवन के सफर में मिलने वाला हर इंसान, हर परिस्थिति और हर अनुभव हमारा शिक्षक बन जाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है। लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी बिल्कुल, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि युवा साथियों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज जो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे विषय जुड़ रहा है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, विषय के बारे में आपको गीत से पहले बता चुके हैं। बात कर रहे हैं कि जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक जरूरी होता है। जब हम जागृति जी शिक्षक शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले स्कूल की कक्षा, ब्लैक बोर्ड, किताबें और अपने गुरुजी की तस्वीर सामने आ जाती है।
1: जी हाँ,
0: निश्चित रूप से हमारे शिक्षक हमारे जीवन को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं सर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी हमारी सीखने की यात्रा क्यों नहीं रुकती? क्योंकि जागृति जी, जीवन स्वयं एक ऐसी पाठशाला है जिसमें हर दिन एक नया अध्याय खुलता है।
1: बिल्कुल,
0: हर मोड़ पर एक नया शिक्षक हमारा इंतजार कर रहा होता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हमारे जीवन में पहला शिक्षक अक्सर हमारे माता पिता होते हैं। हम बोलना, चलना, दूसरों का सम्मान करना, सही और गलत में अंतर समझना और छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना उन्हीं से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। उनकी मेहनत हमें परिश्रम का अर्थ समझाती है, उनका संघर्ष हमें धैर्य सिखाता है और उनका विश्वास हमें आगे बढ़ने का साहस देता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बाद हमारी जिंदगी में आते हैं स्कूल के शिक्षक। वे हमें केवल विषयों की जानकारी नहीं देते बल्कि समय का महत्व, अनुशासन, मेहनत, असफलता से सीखना और अपने लक्ष्य के प्रति हमें ईमानदार किस तरह से रहना है।
0: जी जी।
1: ये सारी बातें कशिश वो हमें सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कभी शिक्षक की डांट उस समय बुरी लग सकती है लेकिन कई बार वही डांट हमें अपनी गलती पहचानने और बेहतर बनने की दिशा भी देती है। एक अच्छा शिक्षक हमारे अंदर छिपी उस क्षमता को पहचान लेता है दोस्तों, जिसे शायद हम स्वयं भी नहीं पहचान पाते। लेकिन श्रोताओं, जीवन की असली पाठशाला यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी हमारा मित्र हमारा शिक्षक बन जाता है। कोई दोस्त हमें आत्मविश्वास सिखाता है, कोई हमारी गलती पर आईना दिखाता है और कोई मुश्किल समय में साथ खड़े होकर हमें रिश्तों की कीमत समझाता है। वहीं कभी किसी दोस्त की गलती देखकर भी हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कौन सा रास्ता नहीं चुनना चाहिए।
0: बिल्कुल साथी जागृति जी, हम अक्सर सफलता को अपनी मंजिल और असफलता को अपनी हार समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी असफलता को सही नजर से देखेंगे तो वह हमें हमारी कमियां बताती है। परीक्षा में कम अंक आए, नौकरी नहीं मिली, किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिली या किसी प्रयास का परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं है। साथियों, हर असफलता हमारे सामने एक सवाल रखती है।
1: जी हाँ,
0: और वो सवाल है कि अब तुमने इससे क्या सीखा है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, युवाओं के लिए ये बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हम तुरंत सफलता चाहते हैं। युवाओं सोशल मीडिया पर किसी की उपलब्धि देखते हैं तो लगता है कि दूसरे लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जागृति जी, हम ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितने प्रयास हैं, कितनी गलतियां हैं और कितनी असफलताएं छिपी हुई हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि समय हमें सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो मुश्किल है वो कल आसान हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो अवसर हमारे पास है वो शायद कल न हो। इसलिए समय की कद्र करना, सही समय पर सही निर्णय लेना और बीते हुए समय से सीखना जीवन की महत्वपूर्ण कला है।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह साथ प्रकृति भी हमारी महान शिक्षक है। पेड़ हमें सिखाते हैं कि खुद धूप और गर्मी सहकर भी दूसरों को छाया दी जा सकती है।
0: जी जी।
1: नदी हमें सिखाती है कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरज हमें रोज नई शुरुआत का संदेश देता है और मौसम हमें समझाता है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: कभी हमारे जीवन में आने वाला कोई अजनबी व्यक्ति भी हमारा शिक्षक बन जाता है। किसी मेहनती मजदूर को देखकर हमें परिश्रम की कीमत समझ आती है।
0: बिल्कुल,
1: किसी किसान से हमें धैर्य और उम्मीद की सीख मिलती है। किसी छोटे व्यवसाय से जोखिम उठाने का साहस मिलता है श्रोताओं। किसी बुजुर्ग से अनुभव की समझ मिलती है और किसी बच्चे से हम बिना किसी चिंता के मुस्कुराना सीख जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है श्रोताओं। शिक्षा केवल किताबों में बंद नहीं है, हमारा हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कोई रिश्ता हमें विश्वास करना सिखाता है तो कभी कोई रिश्ता हमें अपनी सीमाएं तय करना सिखाता है। कभी किसी की मदद हमें इंसानियत समझाती है और कभी किसी की बेरुखी हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर ही रहे हैं कि हमारे जीवन का हर मोड़ हमारे लिए एक शिक्षक है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक की हमें जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: वो शिक्षक कोई भी हो सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। यही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि हमारा हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कोई रिश्ता हमें विश्वास करना सिखाता है, जैसा कि हमने पहले कहा था, और जीवन में आने वाली मुश्किलें भी शिक्षक का काम करती है। जब रास्ता आसान होता है कशिश, तो हम शायद अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते, लेकिन कठिन परिस्थितियां हमें अपने अंदर की ताकत से परिचित कराती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद निर्णय लेने पड़ते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवाओं के जीवन में ये सीख बहुत जरूरी है कि साथियों, हर परिस्थिति को केवल समस्या की तरह नहीं बल्कि सीखने के अवसर की तरह आप देखें।
0: बिल्कुल,
1: अगर कोई गलती हुई है तो खुद को हमेशा दोष देते रहने के बजाय पूछिए कि मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ है श्रोता साथियों, तो भी पूछिए कि मुझे अपनी तैयारी में क्या सुधार करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: अगर किसी ने आपको ठुकराया है तो पूछिए कि मैं अपने आत्मसम्मान और अपने भविष्य को कैसे मजबूत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर श्रोता साथियों सफलता मिल गई है तो सीखना बंद मत कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सफलता भी जागृति जी हमें जिम्मेदारी, विनम्रता और निरंतर आगे बढ़ने की सीख देती है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, एक अच्छा विद्यार्थी वह नहीं है जो केवल किताबों के प्रश्नों के उत्तर जानता हो। अच्छा विद्यार्थी तो वह है जो जीवन के प्रश्नों से भी सीखना जानता हो।
0: बिल्कुल कशिश, हमें अपने अंदर एक ऐसी नजर विकसित करनी होगी जो हर घटना से सीख खोज सके। इसके लिए जरूरी है श्रोताओं कि हम अपने अनुभव पर विचार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, दूसरों की अच्छी बातों से सीखें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल,
0: आज जब युवा अपने करियर, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यवसाय और भविष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब सीखने की आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
1: जी हाँ
0: श्रोताओं, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो कौशल जरूरी है, हो सकता है आने वाले समय में उसमें बदलाव हो जाए। इसीलिए केवल एक डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, सीखते रहने की क्षमता ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: बिल्कुल जागृति जी, और शायद श्रोता साथियों यही इस विषय का सबसे सुंदर संदेश है।
0: बिल्कुल,
1: कि हमारा जीवन एक खुली किताब है, हर दिन एक नया पन्ना है, हर अनुभव एक नया पाठ है साथियों, और हर मोड़ पर कोई ना कोई शिक्षक हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में आपको कोई कठिन परिस्थितियाँ दिखे तो तुरंत ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक पल रुकिएगा और खुद से ये पूछिएगा कि शायद हो सकता है जिंदगी मुझे कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन वह सीख क्या है श्रोता साथियों? क्योंकि जब परिस्थितियों से सीखना आप शुरू कर देते हैं तब हमारी सोच बदलती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब सोच बदलती है जागृति जी, तो हमारे फैसले बदलने लगते हैं। साथियों, हमारे फैसले बदलते हैं तो हमारा भविष्य भी बदलने लगता है।
0: बिल्कुल कशिश, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हमें जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है। साथ ही युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हमें हर गलती को सीख में बदल देना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: गलती होना अंत नहीं है श्रोताओं, लेकिन सुधार की शुरुआत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हमेशा असफलता से आप डरे नहीं, क्योंकि असफलता हमें हमारी तैयारी और कमियों का पता देती है। अपने आसपास के लोगों से जरूर आप सीखिए, हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनुभव जरूर होता है। समय का सम्मान करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा साथ रहती है।
1: जी हाँ,
0: सवाल पूछने से डरे नहीं, जिज्ञासा सीखने की पहली सीढ़ी है श्रोता साथियों। जिस दिन सवाल पूछने से हम डर गए, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आप अपनी संगति अच्छी चुनें, क्योंकि जैसी संगति हमारी होगी वैसा हमारा भविष्य होगा।
1: बिल्कुल,
0: और वैसा ही हमारा करियर होगा। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और आदतों को प्रभावित करते हैं। प्रकृति को देखें और समझें साथियों, प्रकृति में धैर्य होता है, निरंतरता होती है और संतुलन की अनगिनत सीख छिपी होती है। ये बातें हम प्रकृति से सीख सकते हैं। सफलता के बाद भी विद्यार्थी बने रहे, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें सफलता मिल गई है तो हम बादशाह बन गए, बल्कि हर सफलता के बाद हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हर नए मोड़ को अवसर समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है साथियों कि वही मोड़ आपको आपकी नई दिशा दे रहा हो।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, गुरु केवल वह नहीं जो कक्षा में पढ़ाए, गुरु तो वह भी है जो जिंदगी को समझाए। कभी अनुभव गुरु बनता है तो कभी समय, कभी संघर्ष गुरु बनता है, और कभी हमारी अपनी गलती हमें वह पाठ पढ़ा जाती है साथियों, जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जिंदगी में चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर एक शिक्षक है, बस जरूरत उस शिक्षक को पहचानने की है और उस सीख को समझने की है। कहा गया है जागृति जी की जो हर अनुभव से सीखता है वही हर मोड़ पर खुद को नया बनाता है।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि जीवन के हर मोड़ पर हमें शिक्षक मिलते हैं, उन शिक्षकों से हमें क्या क्या सीखना है वो बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने करी। अब समय का मान रखते हुए हमें विदा लेना होगा, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है और आज का दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि बच्चों के जीवन को सही दिशा देने का काम भी करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षक हमारे जीवन में उस दीप की तरह होते हैं जो ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और स्वस्थ जीवन की राह भी दिखाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन इस भविष्य को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है, स्वस्थ शरीर, संतुलित आहार और अच्छी जीवन शैली भी उतनी ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे स्कूल में अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं। ऐसे में स्कूल और शिक्षक बच्चों को पौष्टिक भोजन चुनने, पर्याप्त पानी पीने, फल सब्जियां खाने और जंक फूड से दूरी बनाने की आदत डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर आज हम बात करेंगे स्कूल में पोषण शिक्षा और बच्चे के स्वस्थ भविष्य में शिक्षक की भूमिका पर। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम में। कहना चाहेंगे कि वास्तव में एक शिक्षक बच्चे की जिंदगी में केवल पढ़ाई का मार्गदर्शन नहीं होता बल्कि उसकी आदतों और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इसी विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिड़ियावासा से प्राचार्य विजय कृष्ण वैष्णव जी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।
0: बिल्कुल, जैसा कि सर आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह मनाते हैं और आज हम देख रहे हैं कि 5 सितंबर का दिन है और आज ही के दिन हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो सबसे पहले तो वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से सर आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है कि शिक्षा के साथ पोषण किस तरीके से जरूरी है। तो इस विषय पर बातें तो हम ढेर सारी करेंगे लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके परिचय से रूबरू होना चाहूंगी।
1: मैं विजय कृष्ण वैष्णव, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिड़ियावासा में कार्यरत हूँ एवं पिछले 9 वर्ष से प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और अब तक मेरी कुल 33 वर्ष की सेवाएं हो चुकी हैं। विद्यालय में पोषण शिक्षा क्यों जरूरी है, जैसा कि आपका ये पहला प्रश्न है।
0: बिल्कुल,
1: पोषण शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक क्षमता, एकाग्रता और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सीधा संबंध उनके खान पान से है।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चों को बचपन से संतुलित आहार की जानकारी दी जाए तो वे स्वस्थ भोजन चुनने की जो आदत है उसको विकसित कर सकते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सर,
1: जैसा विद्यालय में पोषण शिक्षा जरूरी।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो यही हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो पोषण से जुड़ी चीजों को नहीं खाते हैं। हम देखते हैं कि घर के खाने को लेकर अक्सर बच्चे जो है आनाकानी कर देते हैं और वो जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
1: बच्चे जंक फूड की तरफ इसलिए आकर्षित है मैडम क्योंकि जंक फूड का स्वाद अलग होता है, थोड़ा आकर्षक उसकी पैकेजिंग होती है, विज्ञापन और आसानी से उपलब्ध होना बच्चों को आकर्षित करता है। आजकल के जो विज्ञापन है, आजकल के जो बच्चे आपको रोटी सब्जी दाल खिलाओ, चावल खिलाओगे तो नहीं खाएंगे, वे जैसे चिप्स है, नूडल्स है, बर्गर है, पिज्जा है और मीठे पेय जो पदार्थ है वो बच्चों को स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए बच्चा जो है उस जंक फूड की ओर आकर्षित होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है जो कि इस अपने को नजर आता है कि जो आकर्षक पैकेजिंग वगैरह जो है ना उससे बच्चा उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि विज्ञापन और आकर्षक जो पैकेजिंग होती है उसकी वजह से बच्चे जो है वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या शिक्षा बदलाव ला सकती है?
1: बिल्कुल, शिक्षक जो है वो इसमें बदलाव लाने का जो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक स्वयं पहले स्वस्थ खान पान का उदाहरण बन सकते हैं और बच्चों को संतुलित आहार के क्या फायदे हैं वो बच्चों को नियमित समझाने पड़ेंगे कि एक हम जंक फूड खाते हैं उससे हमें क्या नुकसान है, और एक नियमित रूप से जो है वो शिक्षक छात्रों को समझाएंगे उदाहरण देकर के, तो छात्र जो है वो उसको समझेगा। जैसे कक्षा में पोषण संबंधित गतिविधियां आप करवा सकते हैं, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवा सकते हैं, हर सब्जी दिवस मना सकते हैं तथा स्वस्थ टिफिन की पहल की जा सकती है। जैसे सरकारी विद्यालय में तो बच्चों को MDM का भोजन जो है वो मिलता है, लेकिन निजी विद्यालयों के अंदर जो बच्चे जाते हैं जो टिफिन लेकर के जाते हैं तो उनको भी एक अच्छा सा टिफिन जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी इस प्रकार का अगर भोजन उनको दिया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षक चाहे तो बच्चों को कई उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि शिक्षक किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं इन सारी चीजों में। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि स्कूल में क्या टिफिन जांच जरूरी है?
1: टिफिन जांच का उद्देश्य कोई दंड देना नहीं है बल्कि स्वस्थ आदत विकसित करना होना चाहिए कि बच्चों के अंदर स्वस्थ आदत का विकास हो।
0: बिल्कुल,
1: समय समय पर सकारात्मक तरीके से टिफिन देखा जाए, यानी कि जैसे बच्चे टिफिन लाते तो अपन उनको जांच करें और बच्चा क्या भोजन उस टिफिन के अंदर लाया है, जैसे बच्चों को पौष्टिक विकल्पों के बारे में अपन समझा सकते हैं, उनके टिफिन को अपन चेक करें, लेकिन अरे ये तू क्या खाना ले आया, ऐसा क्यों लाया, ऐसा बोल के बच्चों को अपन शर्मिंदा या अपमानित अपने को नहीं करना चाहिए। तथा खाद्य एलर्जी और परिवार की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन दें और अच्छे टिफिन में अच्छा भोजन लाने की, गुणवत्ता युक्त जो भोजन लाने की बात अपन उनको समझा करके कर सकते हैं। मैडम
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हमें किस तरीके से बच्चे की टिफिन की जांच को कोई दंड के तौर पर नहीं देखना है, इसे हमें एक ऐसी चीज मानना है जिससे बच्चे भी प्रोत्साहित रहे और वो अगली बार अपने टिफिन में पोषण युक्त चीजों को लेकर पहुँचे। यही सर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल में मिड डे मील चलता है, तो इसका क्या महत्व है?
1: मिड डे मील बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का एक सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम है। मैडम, जो सरकारी विद्यालय जो है वहाँ पर छात्रों को लंच में मिड डे मील का भोजन और साप्ताहिक एक मेनू बना रखा है राज्य सरकार ने, उसके अनुसार एक पौष्टिक भोजन जो है वो विद्यालय में उपलब्ध होता है। इसमें इससे जो है बच्चों की पोषण संबंधी जो आवश्यकताओं को ये पूरा करता है मिड डे मील।
0: बिल्कुल,
1: नियमित उपस्थिति बढ़ाने और पढ़ाने में एकाग्रता बनाए रखने में भी इसकी सहायता जो उसको मिलती है, साथ ही बच्चों में समानता और सामूहिक भोजन की भावना विकसित होती है। जैसे एक विद्यालय के अंदर 100-125 बच्चे अगर 1 से 8 के अंदर हैं, तो एक साथ सारे बच्चे जो है वो भोजन करते हैं, हमारा अध्यापक जो है वो प्रतिदिन भोजन को छकता है, छात्रों के साथ में बैठ करके भोजन करता है, तो उसमें मिड डे मील का जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मैडम विशेष करके महत्व है, जहाँ पर गरीब तबके के जो बच्चे रहते हैं और वो मिड डे मील के माध्यम से उनको पौष्टिक भोजन जो है वो विद्यालय में उपलब्ध कराए जाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि किस तरीके से मिड डे मील जो है इसका एक अलग ही महत्व है, इससे बच्चे जो हैं वो पोषण की चीजों से जुड़े रहते हैं और साथ ही जो माता पिता हैं जिनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं करा सकते हैं, तो स्कूल के माध्यम से बच्चों को वो चीजें मिलती है, साथ ही बच्चों की उपस्थिति जो है वो इसमें बनी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज स्कूल जाएंगे तो हमें ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे बच्चों के लिए ही सरकार द्वारा की गई हैं। यही हम देखते हैं सर कि खाने के साथ साथ पानी पीना भी बहुत जरूरी है, तो बच्चों में पानी पीने की आदत हम कैसे डालें?
1: बच्चों को मैडम नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा शिक्षकों को कि आप जो है वो पानी भी जो है वो बराबर अंतराल में पीते रहें। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में स्वच्छ और आसानी से उपलब्ध पेयजल की व्यवस्था हो। बच्चों के लिए अगर मान लो हैंडपंप लगा हुआ है या मोटर उपलब्ध है, तो पानी जो है वो कैंपर में भर करके या अथवा स्टील की जो टंकियां होती है जिसमें नल लगा हुआ हो, इस प्रकार से छात्रों को पेयजल अगर उपलब्ध कराया जाएगा और बच्चों को बार बार अपन मार्गदर्शन देते रहेंगे कि बेटा आप जिस पीरियड में जब भी है तो अधिक से अधिक पानी जो है वो आप जो है वो पिए, और जब बच्चों को पानी सर्व सुलभ होगा, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय है जहाँ पर आरओ लगा हुआ मैडम, और बहुत अच्छे ऐसे विद्यालय है जहाँ हम कई बार निरीक्षण में भी जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो होती हैं और शिक्षक बार बार छात्रों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, और शिक्षक स्वयं भी पानी पीने की आदत का उदाहरण बने, वो स्वयं भी पिए, तो मैं ये देखो मैं भी तुम्हारे सामने ये पानी पी रहा हूँ, आप भी इसको पानी को पियो, पानी का शरीर के लिए क्या ज्यादा महत्व है वो चीज अपन उनको बता सकते हैं। साथ ही बच्चों को पानी की बोतल साथ रखने के लिए भी अपन उनको जो है वो मार्गदर्शन जो है दे सकते हैं, खेल हो या गर्मी का समय हो उस समय पर्याप्त पानी पीने के लिए अपन जो है उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, मीठे पेय की जगह पानी को प्राथमिकता देने की आदत हमें विकसित करनी चाहिए, क्योंकि वो मीठे पेय जो पदार्थ पीते हैं उसको कम करके उनको अपने बार बार कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो पिए, क्योंकि पानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा
0: जरूरी है। बिल्कुल सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि खेल और पोषण का क्या रिश्ता है?
1: खेल और पोषण एक दूसरे के पूरक हैं। खेल से शरीर सक्रिय और मजबूत बनता है, जबकि पौष्टिक भोजन शरीर को और ऊर्जा आवश्यक पोषक तत्व देता है।
0: बिल्कुल,
1: नियमित खेल के साथ संतुलित आहार बच्चों को शारीरिक क्षमता, एकाग्रता और स्वस्थ विकास में मदद करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों पर ही जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आपने बताया कि खेल और पोषण का क्या रिश्ता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि माता पिता और शिक्षक साथ में कैसे काम करें ताकि बच्चे जो है उन्हें पर्याप्त पोषण और उनके खाने की आदतों में सुधार आ पाए।
1: माता पिता और शिक्षक जो है वो मिलकर बच्चों की भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान दें। माता पिता भी ध्यान दें, शिक्षक विद्यालय के अंदर भोजन संबंधी बातों पर ध्यान दें कि क्या आदत है उस पर ध्यान दें। स्कूल में पोषण संबंधी बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों में अभिभावकों को शामिल किया जा सकता है मैडम।
0: बिल्कुल
1: हाँ। दूसरा जो है, घर और स्कूल दोनों जगह स्वस्थ भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाता है, वो तो माता पिता और शिक्षक दोनों मिलकर के एक साथ ये काम जो है वो कर सकते हैं और अच्छी आदतों का विकास जो है वो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि माता पिता और शिक्षक साथ मिलकर कार्य करेंगे तब ही जाकर बच्चों में परिवर्तन आएगा। हम देखते हैं कि घर में कुछ भी बात अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो हम यही कहते हैं कि जाकर तुम्हारे स्कूल के सर या टीचर को कहेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। यही सर, हम क्या ऐसे प्रयास करें जिससे बच्चे जो हैं उन्हें हरी सब्जियां पसंद आने लगे?
1: जी, आजकल गाँव में हम कई बार विजिट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हरी सब्जी को बना देते हैं तो बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमारा जो एक सिस्टम है, दाल सब्जी और रोटी बनाना जैसे मेनू के अंदर आता है, तो क्या करते हो, दाल के अंदर ही जैसे पालक डाल दिया, लौकी डाल दी, इस प्रकार से वो तो हम कहते हैं दाल और सब्जी अलग अलग बनाए। मैडम कोई बात नहीं, आप इनको भिंडी की सब्जी खिलाइए, दाल के साथ भिंडी की सब्जी बनाइए, पत्ता गोभी की सब्जी बनाइए, फूल गोभी की सब्जी, टमाटर बनाइए। तो ये जो है वो बच्चों के अंदर इस प्रकार की नहीं खाते, ऐसा नहीं है। बच्चों को अपन खिलाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो धीरे धीरे उसको स्वाद आएगा और वो भोजन जरूर जो है वो अच्छा जो है वो करेगा। बच्चों को फल और सब्जियां खाने के लिए कहने के बजाय अपन ये काम कर सकते हैं, वो रोचक तरीके से उससे परिचित करवाएं।
0: बिल्कुल,
1: अलग अलग रंगों और आकारों के जो फल और सब्जियां के आकर्षक अपन प्लेटें बना सकते हैं। किसी दिन विशेष करके जो फल और सब्जियां हैं उसका कोई स्पेशल डे मना लिया, आपने फ्रूट डे मना लिया, फ्रूट्स ले आए तो कभी सलाद काट लिया, गाजर है, मूली है, प्याज है, इस टाइप से। और आजकल जो विद्यालयों के अंदर किचन गार्डन भी बने हुए हैं और वहां पर भी कई प्रकार की जो है वो सब्जियां विद्यालयों के अंदर जो है वो उगाने का भी जो है वो सरकार ने अभी किचन गार्डन कई विद्यालयों में बना रहे हैं और अभी बनने भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार की अपन गतिविधियां भी कर सकते हैं जिसमें बच्चों की रुचि जो है वो सब्जी के प्रति बढ़े। बच्चों को फल सब्जियां उनको क्या पसंद है उसको भी अपन, उनको क्या चीज आपको अच्छी लगती है, तो उनकी रुचि को भी अपन देख सकते हैं और रुचि के अनुसार भी उनको धीरे धीरे अपन फल और सब्जियों की ओर आकर्षित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बच्चों के पोषण को लेकर बात की है कि किस तरीके से शिक्षक और विद्यालय की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है, तो यही आज कार्यक्रम के अंत में और शिक्षक दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोता साथी, हमारे जो विद्यार्थी हैं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरा संदेश यही है कि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ विद्यालय और स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखता है। इसलिए पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है बल्कि सही भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित खेल और स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बच्चों को यह सिखाएं कि स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी आदत कल के स्वस्थ और सशक्त भारत का जो है वो आधार बनेगी मैडम। यही जो है वो मेरा संदेश है।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है यह अवसर प्रदान किया जिसके ऊपर आपके जो प्रश्न किए उसका उत्तर अच्छे से दे सकूं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से एक बच्चा जब स्कूल में पोषण के बारे में सीखता है, पानी पीने की आदत अपनाता है, खेल कूद में हिस्सा लेता है और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है, तो उसका असर केवल आज के स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि उसके पूरे भविष्य पर पड़ता है। जी हाँ श्रोता साथियों, क्योंकि एक शिक्षक की सच्ची सफलता तब है जब उसकी सीख बच्चे की आदत बन जाए। आज हम एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि बच्चे की थाली में पोषण बढ़ाएंगे, जंक फूड को कम करेंगे, उन्हें पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रेरित करेंगे, खेलने के लिए समय देंगे और घर और स्कूल मिलकर उनके स्वस्थ भविष्य की नींव मजबूत करेंगे। इसी संदेश के साथ आप सभी को एक बार फिर से पागल रेडियो परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब कार्यक्रम से विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेती हूँ। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरावारा हंग्र किसान भाई बोन ने आपनी बोन जागृति ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सबनो स्वागत करह आपरे आजनी कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे किसान भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो जागृति बोन आज आपरे किसान भाई बोन तकी कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है कि आपरे जे किसान भाई बोन है ई खेती में नवाचार हरते लावे।
0: होवे तो अंजलि पण अणा विषय माते आज आपरे वाते तो करंगा पण कार्यक्रम नी शुरुआत में आपरे हामरेला गीत ने मोरे कर आपरी वाते।
1: होवे तो किसान भाई बोन आप हमरते रेजू आपरो रेडियो आपरी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: मेरा कहने का यह मत तात्पर्य था। अब नवाचार में हम जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी के साथ हम बागवानी लगा सकते हैं। अब बागवानी लगाने में जैसे कुछ लोग है तो वो हाई डेंसिटी वाला नजदीक नजदीक वाले पौधे लगा देते हैं, तो उसके अंदर किसानी नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते।
1: जी जी,
0: तो हमें जो बागवानी करनी है खेतों में, तो हम जो निश्चित दूरी है, जो रिकमेंडेड है उद्यान विभाग द्वारा, उस उचित दूरी का ध्यान रखेंगे तो उससे जो है बागवानी में फलों का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और उसका आपके जो बीच की जो जमीन है उसको भी आप खेती बाड़ी के रूप में उपयोग में ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर,
0: है ना। और जो फसल अवशेष है उसका निस्तारण, सबसे बड़ी जो ये है कि फसल जो निस्तारण है उसको अवशेष का निस्तारण हम कैसे करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। जैसे कि हम ये देखें कि जो सिंगल जो क्रॉप है, जैसे मक्का उगा रहे मक्का है, या कपास उगा रहे कपास है, या जैसे कि सोयाबीन उगा रहे सोयाबीन है, तो हमको इससे हटके हमारे खेती के अंदर जो है तरह तरह की हमको फसलें लेनी चाहिए। उसके अंदर हम ये निश्चित करें कि हमको क्या क्या जरूरत है। हमको फल की जरूरत है, हमको सब्जी की जरूरत है, हमको दालों की जरूरत है, हमको तेल की जरूरत है, हमारे को अनाज की जरूरत है।
1: जी जी,
0: है ना। तो ये सारी चीजें एक ही खेत में हम कैसे ले सके, एक समय में कैसे ले सके, तो इसके ऊपर जो हमारा हंगणी खेती है।
1: जी जी,
0: कि परंपरागत तरीके से हंगणी खेती करते आए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वही बाजार की हवाओं ने जो है लोगों को थोड़ा सा आकर्षित किया।
1: जी जी,
0: और हमने जो हमारी खेती बाड़ी छोड़ दी और हमने बाजार की खेती अपना ली। तो हमको जो हंगणी खेती है, हंगणी खेती का जो तात्पर्य है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ।
1: जी बिल्कुल सर,
0: इस तरह से करते हैं, या हमारा जो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न है उसको अपनावे। तो उसमें क्या है कि एक बार बुआई करने से हम लगातार उसको जो है उत्पादन लेते
1: ले सकते हैं। जी
0: अब
1: सर,
0: हम देखें कि हमारा जो हंगणी खेती है उसके अंदर हमने फलदार पौधे भी लगा दिए, और उसके अंदर जो भी बीच में जो फलदार पौधों के बीच में जो हमने खेती बाड़ी करी है, खेती बाड़ी के अंदर हमने उसके अंदर सब्जी भी लगाई है, उसके अंदर हमने दाल की फसलें भी लगाई है।
1: जी जी,
0: उसके अंदर हमने तिलहन भी लगाया है, उसके अंदर हमने अनाज भी लगाया है, है ना। तो सीधा सा ये है कि अब उसके अंदर बहुत सारी, जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये फसलें एक दूसरे का सहयोग करती है। जैसे मक्का के साथ में जैसे जालोर लगाई, तो मक्का 60 दिन की हमारी खेती है, 60 दिन के अंदर वो बिल्कुल पक के और मैच्योर होके और हो जाता है। अब जालोर क्या है कि वो 45 दिन बाद में उसका फ्लावरिंग आता है।
1: जी जी,
0: तो फ्लावरिंग चालू होता है और बढ़वार चालू होती है। जब मक्का खत्म होता है तब वो जालोर की जो है बेल है मक्के के ऊपर चढ़ जाती है।
1: जी जी,
0: अब मक्के के ऊपर चढ़ती है और फिर बाद में वो फली देती है, तो वो उसको उपयोग आ रही है। अब जो जालोर है वो लेग्यूमिनस जैसे कि क्रॉप है, तो उसके जड़ों में जो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया रहते हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं, खाद यूरिया लेते हैं, और वो जमीन के अंदर उसको जो है नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। वो नाइट्रोजन है जो दूसरी फसलें साथ में है वो ले लेते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे का सहजीवी बन के चलते हैं। अब जैसे हम हमारी खेती को इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि ऊपर जड़ों वाली जो फसल है उसके साथ में गहरी जड़ों वाली और मध्यम गहरी जो जड़ों वाली, है ना, इस तरह की हम करेंगे तो हमारी जमीन में जो ऊपर जो उर्वरकता है वो ऊपर जड़ों वाली फसल ले लेगा।
1: जी जी,
0: फिर एक लाइन मध्यम जड़ वाली होगी और एक लाइन है वो गहरी जड़ वाली फसल की होगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस तरह से जमीन के अलग अलग लेवल पे हम फसलें लेंगे तो उससे उत्पादन भी बाधित नहीं होगा, प्रचुर मात्रा में उनको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद है वो उनकी जड़ की स्थिति के आधार पे उनको मिलेगा। तो इस तरह से हम हमारा जो नवाचार कर सकते हैं। दूसरा नवाचार ये है कि हमको जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती को हमको त्याग के हमको जैविक खेती करना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि जैविक खेती से कुछ उत्पादन नहीं होता है। हाँ, एक दो साल में चूंकि वो जमीन है, अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर अफीम खाना सीख जाता है और अगर उसको एक दिन अफीम नहीं दिया जाए तो वो मेरे हिसाब से पूरा दिन भर कोई काम नहीं करेगा, अनुरूरक हो जाएगा
1: जी, बिल्कुल सर।
0: तो इसी तरह से जो आपकी जो खेती बाड़ी है या आपके जो खेत है वो भी नशीले हो चुके हैं रासायनिक उर्वरक से, तो उनसे आपको निस्तरणीकरण अगर करना है या छुटकारा दिलाना है तो एक साल आपको थोड़ा सा कम उत्पादन होगा, उत्पादन ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि जमीन जन्मदात्री है तो वो जो भी उसके अंदर उगता है उससे कुछ न कुछ हमको मिलता है
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो मिलता है तो वो बिल्कुल आपके खाने के जितना तो उपयोग में वो आएगी, फिर धीरे धीरे एक साल उसको हम जैविक खेती के रूप में कन्वर्ट करें, फिर दूसरे साल उत्पादन बढ़ेगा, फिर तीसरे साल के बाद में जाके चौथे साल में आपको भरपूर उत्पादन, पूरा उत्पादन मिलेगा और फिर धीरे धीरे जो है वो उत्पादन आपका बढ़ता जाएगा और आपको स्थिति ये आ जाएगी कि आपको जो खाद जितना आप उपयोग में लेते हैं देसी, वो खाद की मात्रा भी आपको धीरे धीरे कम कर देंगे तो भी उत्पादन उतना हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ऑटोमेटिक खाद बनने की जो प्रक्रिया है जमीन में वो पुनः आपकी स्थापित हो जाएगी ये 3 साल में। ऐसा नहीं है कि हम उर्वरक देते हैं तभी जो जमीन है वो हमको उत्पादन देती है।
1: जी जी।
0: अब हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे जंगल हम देखते हैं, जंगल में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे उगते हैं, छोटे पेड़ भी होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं, फल भी होते हैं, सारे पेड़ पौधे भी है अलग अलग प्रकार के। अब वहाँ कौन व्यक्ति जाके उर्वरक देता है
1: जी, बिल्कुल
0: है ना, उनको तो आवश्यकता है। तो वो वहाँ पे वो प्रक्रिया जो खाद बनाने की ऑटोमेटिक वो जमीन के अंदर वो स्थापित है
1: जी, बिल्कुल,
0: वो पूरी चेन बनी हुई है ना
1: जी,
0: तो पशु खाएगा, मींगनी करेगा या गोबर करेगा, उससे वापिस वो बनेगा, पेड़ पौधों के पत्ते गिरेंगे, वो सड़ेंगे और सड़के वो खाद बनाएंगे, बाहर से उड़ के और कुछ बीज आएंगे वहाँ गिरेंगे, पेड़ उगेंगे और वो उत्पादन देगा, न तो वहाँ कोई बीज लगाने जाता, न वहाँ कोई खाद देने जाता, न वहाँ कोई पानी देने जाता। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है आपके खेतों में पुनः स्थापित हो जाएगी जैविक बनने के बाद में और वो उस तरह की चलती रहेगी
1: जी जी।
0: और अगर जैविक में आपने ज्यादा मात्रा में खाद दे दिया तो भी आपका उत्पादन है वो बाधित नहीं होगा, और अगर मान लो कभी कभार ऐसा हुआ कि पूरी मात्रा में जितना देना चाहिए उतना अगर नहीं दिया तो भी ज्यादा उत्पादन उसमें बाधित नहीं होगा
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इस तरह का जो है हमको नवाचार है, हम कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं है। अभी इसके अंदर जैसे कुछ बहुत सारी जो जैविक में जाते हैं तो अगली बार हम चर्चा करेंगे कि जैविक खेती के लिए जो भी खाद है, मतलब हम ऐसा सोचते हैं या ऐसा लोगों ने भर दिया है दिमाग में कि उसके लिए तो बहुत ज्यादा पशुओं की आवश्यकता है
1: जी जी।
0: या जैविक उत्पादन के लिए तो इतने पशु कहाँ से लाएंगे, इतना चारा कहाँ से आएगा, इतना कहाँ से आएगा, तो बहुत सारी बहुत सस्ती और बहुत एकदम बिना खर्चे की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं
1: कि
0: जिनसे हम अपना सकते हैं, मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं में हम अच्छी तरह से हमारी खेती बाड़ी को जैविक तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं
1: जी जी।
0: और आज के जो इन्वायरमेंट या वातावरण में देखे तो जैविक को जब से कोरोना हुआ है या कोरोना महामारी आई है तब से उसको उसके जो प्रोडक्ट देखेंगे हम या कोई भी चीजें देखेंगे तो उनका काफी प्रचुर मात्रा में डिमांड है हर जगह। तो सब सर्वप्रथम तो मैं यही अपील करूंगा कि खेती करें, आपके खुद के लिए करें, आपके घर के लिए करें, आपके बच्चों के लिए करें, आपके परिवार के लिए करें, आपके पशु के लिए करें, उसके बाद आप अड़ोसी पड़ोसी के बारे में सोचें, उसके बाद आप आपके गांव के बारे में सोचें, उसके बाद आपका ब्लॉक जिला उसके बारे में सोचें, फिर आप मार्केट की तरफ सोच के और खेती करें
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी बात से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है कि अगर हमें खेती में नवाचार करना है तो खेती में सबसे पहले हमें जैविक चीजों को अपनाना है, उसी के साथ हमें अपने जो एरिया है वहाँ की जो खेती होती है उसी को ही बरकरार रखना है, हमें बाजार की जो चकाचौंध भरी जो किस्में होती है उन पर निर्भर नहीं रहना है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे श्रोता साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद
2: અંજલિ બોલ જેમ કે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં સોહન સર આવી હતા ને એણે આપણને બતાડ્યું કે આપણે ખેતીમાં હું નવાચાર કરી શકું
1: હોપે તો જાગૃતિબોન એણે આપણને ઘણી વાતે બતાડી હે અગર એ વાતે આપણે કિસાન ભાઈ બોને ધ્યાન તકી હાંભરી હોંગા તો એ બી આપણી ખેતીમાં નવાચાર કરીને આપણી જે આજીવિકા હે એને અસલ તરીકા થકી સલવી શકેગા.
2: હવે તો અંજલિ પણ વાતે તો આપણે ઘણા કની કરી ને હવે ટેમનું માન રાખતી થકી પડવું પડે સૂટું, તો સૂટા તો પડે પણ સાથે સાથે સાંભળેલા એક ઓર કીત ને મોરે પડે સૂટા.
1: હવે

0: जागृति बुन गीत तो आयशु पुरु ने अनस गीत हाथे कार्यक्रम खेती बाड़ी तकी पड़ा सूट
1: हो गए।
0: आशा कर रहा कि ऐसे कार्यक्रम में जी भी बातें रही है ये अपने किसान भाई बुनों ने गमी होगा। तो किसान भाई बुन आपने अमरो आज नवा कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली शको अमरे अणा पता माते।
1: तो किसान भाई बोन अमारो पतु लखी लो, अमारो पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपनो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी पल्ले आप अमने फोन करी शको आपड़े अणा नंबर माते। आपनो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो किसान भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक नया विषय ने हाथी तारुदी।
1: राम राम
0: राम राम।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है समाज और राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार को लेकर। श्रोता साथियों, ईंट पत्थरों से इमारत बनती है, लेकिन संस्कारों और शिक्षा से राष्ट्र बनता है, और इन संस्कारों को आकार देने वाला व्यक्ति है शिक्षक। तो आज हम जानेंगे शिक्षक दिवस के महत्व को लेकर, बहुत सारी बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज

0: चल रही है समाज और राष्ट्र निर्माण के सच्चे शिल्पकार हैं शिक्षक को लेकर, जिसमें श्रोता साथियों हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करें कि शिक्षक और पर्यावरण संरक्षण की क्या भूमिका है। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षक विद्यार्थियों को पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, स्वच्छता और प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूक कर सकता है। विद्यालय में छोटे छोटे प्रयास बच्चों के व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनता है जागृति जी, तो वह अपने परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही हम बात करते हैं बदलते समय में शिक्षक की भूमिका को लेकर। तो आज का युग तेजी से बदल रहा है। हम देखते हैं कि डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा किए हैं। विद्यार्थी अब केवल किताबों और शिक्षक तक सीमित नहीं है, उनके पास जानकारी के बहुत सारे स्रोत भी है। ऐसे समय में शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब शिक्षक का कार्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सही जानकारी पहचानना, उसका विश्लेषण करना और उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना सिखाना भी है। इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सही नहीं होती है श्रोताओं। शिक्षक विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करके उन्हें गलत सूचना, अफवाह और भ्रामक सामग्रियों से बचने की क्षमता दे सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ तकनीक शिक्षा को आसान और प्रभावी बना सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तकनीक शिक्षक का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकती। मशीन जानकारी दे सकती है, लेकिन मानवीय संवेदना, प्रेरणा, नैतिक मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग का महत्व अलग है।
1: जी हाँ।
0: एक शिक्षक विद्यार्थी की आंखों में छिपी चिंता को पहचान सकता है, उसकी प्रतिभा को समझ सकता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यही मानवीय संबंध शिक्षा को जीवंत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए भविष्य की शिक्षा में तकनीक के साथ शिक्षक की भूमिका को और मजबूत करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि अनुशासन जीवन में सफलता की आधारशिला है। शिक्षक विद्यार्थियों को समय का महत्व, नियमितता, जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। लेकिन श्रोताओं, अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है। वास्तविक अनुशासन तो वो है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को समझकर सही कार्य करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ साथ ही आपको बताएंगे कि शिक्षक और पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी कि आज का पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की आवश्यकता बन चुका है अंजलि। आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और हरियाली बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, स्वच्छता और प्लास्टिक के कम उपयोग के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ये छोटे छोटे जो प्रयास है वो अगर हम बचपन से बच्चों में डालेंगे तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं।
0: जी जी।
1: और जब विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनता है अंजलि, तो वो अपने परिवार और समुदाय को भी प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है शिक्षक और वैज्ञानिक सोच की।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, राष्ट्र की प्रगति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ी हुई है। अंधविश्वास, अफवाह और बिना प्रमाण किसी बात को स्वीकार करने के बजाय तथ्यों और तर्क के आधार पर सोचने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, वह उन्हें प्रयोग करने, गलतियों से सीखने और नए समाधान खोजने का अवसर देता है। यही वैज्ञानिक सोच आगे चलकर नए आविष्कारों, नवाचारों का आधार बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, लेकिन युवा शक्ति को सही दिशा मिलना आवश्यक है। शिक्षक युवाओं को उनके लक्ष्य निर्धारित करने, समय का सदुपयोग करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आज के युवा के सामने शिक्षा, रोजगार, तकनीक और सामाजिक बदलाव से जुड़े अनेक अवसर और चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षकों ने केवल नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने कौशल को विकसित करने, नए अवसर खोजने और समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा दे सकता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, एक जो शिक्षक की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भूमिका उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है अंजलि। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षमताएं, बदलती तकनीक, नए सामाजिक परिवेश और बढ़ती शैक्षणिक अपेक्षाएं शिक्षक के सामने कई सारी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ऐसे में जो शिक्षक है उनका निरंतर सीखते रहना बहुत जरूरी है। एक अच्छा शिक्षक स्वयं भी विद्यार्थी बना रहता है, वो नई तकनीक सीखता है, नए विचारों को अपनाता है और अपनी शिक्षण पद्धति को समय के अनुसार विकसित करता है। किसी समाज की प्राथमिकताओं का पता इस बात से चलता है साथियों कि वो अपने शिक्षकों का कितना सम्मान करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षक के सम्मान का अर्थ केवल शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं देना नहीं है। वास्तविक सम्मान तो तब है श्रोताओं जब समाज शिक्षा और शिक्षक की भूमिका को गंभीरता से समझता हो। शिक्षक को उचित संसाधन, सम्मानजनक

0: कार्य वातावरण और अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के अवसर मिलने चाहिए।
1: जी जी,
0: क्योंकि शिक्षक मजबूत होगा तो शिक्षा मजबूत होगी और शिक्षा मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, शिक्षक राष्ट्र निर्माण का शिल्पकार है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन विद्यार्थी उस निर्माण की जीवंत शक्ति है, इसलिए विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षक की सीख को जीवन में उतारना चाहिए। अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही ईमानदार, संवेदनशील, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनना भी आवश्यक है। शिक्षक

FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वाथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

जरे गौर है वो ये कि हंगामा है क्यों बरपा, इसकी ट्रांसलेशन मैं आवाज़ के और तानों के साथ इसके जमजमों के साथ करूँगा।

46 की ट्रांसलेशन कर दूं, उनके जमाल रुख पे, उनके रोशन चेहरे पे, जमाल रुख रोशन चेहरा, उनके जमाल रुख पे उन्हीं का जमाल था, उनके रोशन चेहरे पे उन्हीं की रोशनी थी।

खबर करो कि ये उनको खबर करो कि है बिस्मिल करीब मर्ग, करीब मर्ग जो आधा मरा हुआ हो उसको बिस्मिल तड़पते हुए को भी कहते हैं। तो बिस्मिल शायर का नाम है।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।